91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहा सारेंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तोहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिष्ठो तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इये ही बनी रिया कनिष्ठ सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गुंज अपने पंडी।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेक्ट श्रोता तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2000

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कुछ लोग गलती करने के बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना उन्हें पछतावा होता है ना अपने कर्मों का डर, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन याद रखो पार्थ, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का प्रहार सबसे देर से पर सबसे गहरा होता है। समय शांत जरूर रहता है पर हर कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है, और जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता।
2: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई।
1: तुम घर छोड़ के जा रही हो?
0: मेरी जॉब लग गई है।
1: अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है, तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना।
0: आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना है।
1: गुड गुड, जाओ पैकिंग करो।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों, जब भी मन चाहे आपका सुकून, तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।
1: दिल का हाल सुने दिल वाला,

तो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों, जब भी मन चाहे आपका सुकून, तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

0: दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों, जब भी मन चाहे आपका सुकून, तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

921.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। दोस्तों कार्यक्रम आप सभी सुन रहे थे गीत सुहाने नए पुराने वही एहसास हर बार नया। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे थे अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
4: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कुछ लोग गलती करने के बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ना उन्हें पछतावा होता है, ना अपने कर्मों का डर, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन याद रखो पार्थ, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का प्रहार सबसे देर से पर सबसे गहरा होता है। समय शांत जरूर रहता है, पर हर कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है, और जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता।
2: यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बात
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई।
5: तुम घर छोड़ के जा रही हो?
4: मेरी जॉब लग गई है।
5: अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है, तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना।
4: आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना है।
5: गुड गुड, जाओ पैकिंग करो।
4: हाँ, मैं पैकिंग कर लेती हूँ।

0: नमस्कार सभी श्रोताओं को, गुड मॉर्निंग धर्मशाला। ये कार्यक्रम शुरू हो गया है रेडियो गुंजन धर्मशाला से, फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम रहते हैं आपके साथ 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक पूरे 2 घंटे, और इन 2 घंटों में बहुत सारी बातें होती हैं हमारी आपके साथ। जी हाँ, जानकारियाँ भी देते हैं हम आपको और मनोरंजन भी आपका करवाते हैं। साथ ही साथ करते हैं अपने दिल की बातें भी, जो कहीं ना कहीं सभी श्रोताओं से कनेक्टेड तो रहती ही हैं। और अब हम सिर्फ श्रोता नहीं बोला करेंगे, क्योंकि अब हमारी ऑडियंस भी आ गई है जो कि हमें देखती है फेसबुक के पेज से लाइव। और बहुत समय से हमने ये फेसबुक पेज लाइव करना शुरू कर दिया है। आप लोग भी जुड़िए, जाकर के देखिए, अपना फेसबुक खोलिए अपने अपने मोबाइल पर, और रेडियो गुंजन धर्मशाला या फिर गुंजन धर्मशाला को टाइप कीजिए, सर्च कीजिए, और वहां पर हमें लाइव आप देख सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे क्यों, आप सभी के अपने कार्यक्रम में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले उन सभी श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारक हो जो कि किसी न किसी खास वजह से आज का ये अपना दिन मना रहे हैं खास दिवस के रूप में। तो आज है 17 जून 2026 बुधवार का आज का दिन है। और पता है आज भी एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, उसके बारे में कार्यक्रम में आगे करूंगी बात। और अभी खोलते हैं हम अपना पिटारा, मौसम के बारे में भी हम बात करेंगे इस खूबसूरत से गीत के बाद। गीत आ रहा है फिल्म आर पार से, गाया है गीता दत्त ने।
1: गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।

जी हाँ, 91.2 FM रेडियो गुंजन से मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और ये जो गीत अभी आपने सुना फिल्म आर पार से गीता दत्त का गाया बाबूजी धीरे चलना। पता है हुआ क्या है, मैं स्टूडियो की तरफ आ रही थी ना, जब वैसे तो जब भी आती हूँ या कहीं पर भी हम जाते हैं तो ट्रैफिक यानी सड़क पे जो चलने के रूल्स होते हैं ना वो हमेशा फॉलो करने ही चाहिए, चाहे वो मैं हूँ या कोई और है। लेकिन जब हम फॉलो करते हैं सामने वाला नहीं करता है तो बहुत अजीब सा लगता है, देख करके गुस्सा भी आता है, मन करता है कि पता नहीं क्या कर दो। क्योंकि देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बड़े धोखे हैं ज़िंदगी की राहों में, यहाँ पर सड़क पे चलने में भी अगर आपने ज़रा सी कोताही बरती, इधर से उधर हुआ नहीं कि आप धोखा खाए और कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस ना आए और इनसे हमें दो चार ना होना पड़े, तो जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका पालन सभी को करना चाहिए। और रूल से अलग इतर अगर मैं बात करूं तो कई लोग जो हैं वो अगर गाड़ी में चले हुए हैं, मान लो छोटा हाथी है या बस भी है, तो वो ये ध्यान ही नहीं रखते हैं कि साइड से भी कोई जा रहा होगा, कोई पैदल यात्री होगा या फिर कोई टू व्हीलर वाला होगा, क्या करते हैं अपना मुंह निकाला बाहर और बाहर थूक दिया। अब वो चाहे उनका गुटखा वाला थूक हो या वैसे ही नॉर्मल हो, लेकिन वो जाकर के किसके मुंह पर गिर रहा है उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। तो ये थोड़े से सिविक सेंसेस होते हैं, सिविक सेंस भी नहीं है लोगों को, ट्रैफिक रूल्स की तो बहुत दूर की बात है। तो क्या कहना है, क्या सोच है आप लोगों की इस पर? खैर, ये आप हमें यहाँ कमेंट्स पे बता सकते हैं, क्योंकि पहले तो आप हमसे कनेक्ट नहीं कर पाते थे, तो हम ये सोचते थे कि काश आप लोगों की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया हम तक पहुँचे, लेकिन अब तो पहुँच सकती है ना, अब तो आप हमें सुनने के साथ साथ देख भी पा रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के लाइव पेज पर। जी हाँ, ये कार्यक्रम भी लाइव है और आप हमें लाइव देख भी पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप हमें ज़रूर बता सकते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, या इसमें और क्या होना चाहिए। तो चलिए फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको मौसम की जानकारी दे देते हैं।

हवा में नमी की बात करूं तो हवा में नमी है 55%। और हाँ, आज भी सुबह से मौसम कुछ ऐसा ही बना हुआ है कि शायद वो बारिश करवाएगा। तो देखिए, दिन बढ़ते बढ़ते के साथ क्या क्या होता है। बारिश की संभावना दोपहर 12:30 बजे से लेकर के शाम 6:30 बजे के बीच में है। हल्की बारिश या फिर गरज के साथ बौछारें पड़ने की सबसे अधिक 35% से लेकर के 65% तक संभावना है भाई। और हम बात करें अगर कि हवाएं किस तरह से चलती हैं, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती ही हूँ, तो हवा दक्षिण पश्चिम दिशा से 3 से 4 एम्पियर की गति से चल रही है। और हवा में नमी हमने आपको बता दिया है कितनी है, याद कीजिए और यहाँ पे कमेंट्स में बताइए। यूवी इंडेक्स की बात करें हम तो दोपहर के समय ये 10 यानी कि बहुत अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसलिए बाहर निकलते समय हमेशा ही आप जो भी प्रोटेक्शन, सन प्रोटेक्शन कर सकते हैं वो कीजिएगा। हम नहीं कहते कि आप क्रीम लगाइए या कुछ कीजिए, वो आपका अपना देखना है कि आपको किस तरह से इन अल्ट्रावायलेट रेज से या सन रेज से अपना बचाव करना है। अब वो आप चाहे मुंह पे कपड़ा बांधें या छाता लेके जाएं या फिर सन प्रोटेक्शन के लिए कोई क्रीम इस्तेमाल करें, वो आपकी अपनी चॉइस है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, सुनेंगे एक और खूबसूरत सा गीत।

0: अच्छे हैं।
1: सच्चाई फिल्म गली गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में आप सुन रहे थे 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और श्रोताओं, अब हम रुकेंगे कार्यक्रम में प्रादेशिक समाचारों के लिए। बस कुछ ही पलों में आपके रेडियो सेट्स पर प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार। इसके लिए हमें चलना होगा आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो।
2: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियान में G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को किया संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर दिया जोर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से धर्मशाला के 2 दिवसीय प्रवास पर, विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। कुल्लू जिला के जिया में ड्रेजिंग का कार्य शुरू। मॉनसून से पूर्व लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन नदी तल सामग्री निकालने का लक्ष्य। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों से जालसाजों से सावधान रखने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियान में G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है।
1: बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। इधर G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। भारत G7 शिखर सम्मेलन में सहयोगी देश के तौर पर शामिल है। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी आज G7 के एक अन्य सत्र में भी हिस्सा लेंगे। इसका विषय है सबके लाभ के लिए संतुलित समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास की फिर से शुरुआत। वे यांत्रिक मेधा को सुरक्षित, तेजी से और प्रभावी ढंग से लागू करने पर आयोजित वर्किंग लंच में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से 2 दिवसीय कांगड़ा जिले के धर्मशाला दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री आज सुबह नई दिल्ली से हवाई मार्ग से गग्गल पहुंचेंगे। इसके बाद वे नगरोटा बगवां के पठ्यार स्थित धर्मगिरी में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जन शिकायतें भी सुनेंगे और लोगों से सीधा संवाद करेंगे। दोपहर बाद मुख्यमंत्री धर्मशाला पहुंचेंगे और शाम को कोतवाली बाजार स्थित फव्वारा चौक के सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन करेंगे। इसके पश्चात वे धर्मशाला में ई बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन सहित सिटी बस डिपो का लोकार्पण करेंगे। वे अपने प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री कल दाड़ी स्थित मेला मैदान में कांगड़ा जिले की नव निर्वाचित ग्राम पंचायतों के प्रधानों और उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। इस कार्यक्रम में जिले भर से पंचायत प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। कुल्लू जिला में व्यास व पार्वती नदी के संगम स्थल जिया में वैज्ञानिक ड्रेजिंग कार्य का शुरू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य केवल नदी तल से वैज्ञानिक तरीके से सामग्री निकालना ही नहीं, बल्कि नदी प्रशिक्षण, तलछट प्रबंधन, संवेदनशील आधारभूत संरचनाओं पर दबाव कम करना और व्यास नदी तंत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ जोखिम को कम करना भी है। वर्ष 2026 के मानसून से पूर्व इन स्थानों से लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन नदी तल सामग्री निकाले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: का उद्देश्य केवल नदी तल से वैज्ञानिक तरीके से सामग्री निकालना ही नहीं बल्कि नदी प्रशिक्षण, तलछट प्रबंधन, संवेदनशील आधारभूत संरचनाओं पर दबाव कम करना तथा ब्यास नदी तंत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ जोखिम को कम करना भी है। जिया संगम स्थल को हिमाचल प्रदेश में ड्रेजिंग एवं नदी प्रबंधन के लिए विकसित की जा रही व्यापक कुल 9 साइटों का चयन किया गया है। वर्ष 2026 के मानसून से पूर्व इन स्थानों से लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन नदी तल सामग्री निकाले जाने का लक्ष्य रखा गया है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTS सेवा और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिंदू पंचांग विक्रम संवत के अनुसार महाराणा प्रताप जयंती की आज मनाई जा रही है। मेवाड़ के महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप का नाम भारत के उन वीरों में लिया जाता है जिन्होंने देश को मुगलों से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। देश सहित प्रदेश भर में आज इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कांगड़ा जिले के धर्मशाला में महाराणा प्रताप जयंती समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA ने महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को कोई फिलहाल बंद नहीं किया गया है। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। यह दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चारागाह पहचान, सम्मान और पुनर्स्थापना। यह विषय चारागाहों के आर्थिक, पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक महत्व को अधिक मान्यता देने, संरक्षकों के प्रति सम्मान दिखाने और खराब हो चुके चारागाहों को पुनर्स्थापित करने के लिए अधिक निवेश की जरूरत की ओर संकेत करता है। जल शक्ति विभाग द्वारा आज केलंग में मल निकासी योजना के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। ये योजना केलंग क्षेत्र में आधुनिक और व्यवस्थित सीवरेज व्यवस्था विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
3: केलंग क्षेत्र में आधुनिक और व्यवस्थित सीवरेज व्यवस्था विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। परियोजना के क्रियान्वयन से क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ साथ लोगों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। विभाग की ओर से आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है किशाऊ बांध परियोजना, हिमाचल के हिस्से का खर्च उठाएंगे दिल्ली राजस्थान प्रोजेक्ट, लागत उठाने के एवज में अपने हिस्से का पानी दोनों राज्यों को देगा हिमाचल प्रदेश। पंजाब केसरी के शब्द है किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचली हक को मनवाने में सफल रहे सुक्खू, सालाना 600 करोड़ रुपए आय होगी। दैनिक जागरण और दिव्य हिमाचल की लगभग एक जैसी सुर्खी है आउटसोर्स भर्तियों पर लगी रोक, हाईकोर्ट का आदेश, कोई भी नियुक्ति भर्ती और पदोन्नति नियमों के विपरीत नहीं होगी। दैनिक भास्कर की एक खबर है हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBSE स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्तियों पर रोक, 15 जून को जारी आदेश रद्द, अगली कार्रवाई कोर्ट के निर्देशों पर निर्भर। हिमाचल दस्तक लिखता है एक बागवान से 100 बोरी तक सेब ही खरीदा जाएगा, सेब खरीद पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में सत्र को

0: किया संबोधित, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर दिया जोर। मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू आज से धर्मशाला के 2 दिवसीय प्रवास पर, विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। कुल्लू जिला के जिया में ड्रेजिंग का कार्य शुरू, मानसून से पूर्व लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन नदी तल सामग्री निकालने का लक्ष्य। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों से जालसाजों से सावधान रहने का किया आग्रह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 बजे। नमस्कार।
1: जी श्रोताओं, 91.2 FM रेडियो गुंजन से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और अब कार्यक्रम में लेते हैं छोटा सा अंतराल।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

जी हाँ श्रोताओं, तो प्रादेशिक समाचारों और इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। फ्रीक्वेंसी है 91.2 एफएम और चैनल है रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और मेरे साथ हैं मेरी टेक्निकल असिस्टेंट शशि। शशि को भी आप सभी जानते ही हैं, है ना? और आपको एक बार फिर से बता दूं मैं कि आप ये कार्यक्रम अब अपने रेडियो सेट्स पर सुनने के साथ साथ हमें फेसबुक पेज पर लाइव भी देख सकते हैं, यानी कि सुनने के साथ साथ इस कार्यक्रम को आप देख भी सकते हैं। गीत तो आप रेडियो सेट पर ही सुनेंगे, लेकिन जो भी बातें अभी हो रही हैं वो हमें आप लाइव देख सकते हैं। तो ये जो गीत समाचारों से पहले मैंने आपको सुनवाया था कि 100 बरस की ज़िंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, और अगला गीत जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ इन दोनों गीतों को मिला जुला के आज का एक विचार साझा करते हैं आपके साथ। मन की संकीर्ण दीवारों में घुटकर जीने से बेहतर है कि हम अपने दिल के दरवाजे खोलें। ये 4 दिन का जीवन बेहद छोटा है, लेकिन इसीलिए इसे नफरत में गंवाने की बजाय प्यार और खुलेपन से जीना ही सच्ची जिंदगी है। से जुड़िएगा हमारे फेसबुक पेज से लाइव और कीजिएगा यहाँ पर कमेंट, क्योंकि कुछ लोगों का की शिकायत हमेशा ये रहती थी कि हम अपनी प्रतिक्रियाएं कहाँ से दें, हम कैसे करें, और हम अपना व्हाट्सएप नंबर एक आपको देकर रखते हैं कि आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर तो आप सीधे सीधे कमेंट्स कर सकते हैं हमको। चलिए बढ़ते हैं हम अब गीत की ओर, क्योंकि बातें बहुत सारी हो गई हैं। 9:20 से लेकर के हम बातें ही कर रहे हैं, मतलब आपको बातें ही सुनने को मिल रही हैं। तो अब लेते हैं ये खूबसूरत सा गीत। धन दौलत फिल्म का ये गीत है, किशोर कुमार और आशा भोसले तथा साथियों की आवाज़ों में।

जी श्रोताओं, जीना बिल्कुल भी प्यार के बिना आसान नहीं होता है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि जिंदगी में हमें कहीं प्यार ना मिले। जहाँ मिले वहाँ पर उसे सहेज लेना चाहिए, संभाल लेना चाहिए, कहीं बाद में कोई पछतावा ना रह जाए कि वो दिन हमने यूं ही गवा दिए। दो मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से आपने सुना ये गीत। धन दौलत फिल्म का ये गीत था किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। श्रोताओं, अब बात करेंगे हम 17 जून की, यानी कि आज के दिवस की, क्या क्या खास हुआ था पीछे इतिहास में, आज की तारीख में। क्योंकि श्रोताओं देखिए, दिन तो गुजर जाते हैं, जी दिन चले जाते हैं, लेकिन तारीखें बदल बदल करके आती हैं। तो वही तारीख फिर बदल करके आ चुकी है, और यही तारीख फिर जब दोबारा इसी तारीख तक पहुँचेगी तो इतिहास बन चुकी होगी। सत्रह जून का जो दिन है वो रानी लक्ष्मीबाई का

बुरहानपुर में निधन हुआ था, जिनकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता और उन्हें महान संस्कार देने वाली राष्ट्रमाता राजमाता जीजाबाई का भी निधन हुआ था 1674 में। और साबरमती आश्रम की शुरुआत हुई थी 1917 में महात्मा गांधी की कस्तूरबा गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के हृदय कुंज में रहना शुरू किया था। और कुछ सालों पहले मैं उस जगह को विज़िट करके भी आई थी, तो हाँ वहाँ की वाइब्स जो है ना वो बहुत अच्छी हैं, देखने लायक है वो जगह। कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। भारत में पूरी तरह स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस का बेंगलुरु में सफल परीक्षण किया गया था 2008 में। और भी बातें करेंगे हम कार्यक्रम में आगे आपसे। फिलहाल आपको बता दें कि आप हमें रेडियो गुंजन के धर्मशाला की पेज पर लाइव भी देख पा रहे हैं, तथा आप हमें 88.4 मेगाहर्ट्ज जतवाल की आवाज से भी सुन रहे हैं हमीरपुर से। सुन तो आप हमें हर जगह से रहे हैं श्रोताओं, देखिए हमारी ऐप के जरिए तो आप हमें देश विदेश तक सुनते ही हैं। तो रेडियो गुंजन धर्मशाला की ऐप को भी डाउनलोड किया है ना आपने, और अगर कर लिया है तो अपने साथियों को भी बताइए ताकि वो भी हमें आसानी से सुन पाएं। चलिए आज कार्यक्रम में ना जो गीत लेकर के आई हूँ मैं आप सभी के लिए, वो गीत कुछ अलग ही मूड के हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि किस किस तरह के ये गीत हैं। आइए जून के महीने से संबंधित एक गीत सुनते हैं। मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ है, जी हाँ बिल्कुल जादुई आवाज़ें। फिल्म का नाम है 12 o'clock और ये हो गया है गीत शुरू आपके रेडियो सेट्स पर।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

और श्रोताओं, हम बात कर रहे थे 17 जून के बारे में और 17 जून के कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो और बता देते हैं आपको। कैलाशनाथ काटजू देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, प्रमुख विधिवेता और राजनीतिज्ञ, जो बाद में गृह और रक्षा मंत्री तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, उनका जन्म हुआ था 1887 में। और भारत के महानतम टेनिस खिलाड़ियों में से एक और ओलंपिक पदक विजेता लिएंडर पेस का जन्म हुआ था 1973 में, आज ही की तारीख में, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और हाँ, आज जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, वो है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, और साथ ही साथ विश्व मगरमच्छ दिवस भी आज ही है। इसी के साथ लेते हैं हम एक जानकारी। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित होने वाला बहुप्रतीक्षित बोह घाटी युवा उत्सव इस वर्ष 4 और 5 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। ये निर्णय शाहपुर मिनी सचिवालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान लिया गया। बैठक की अध्यक्षता शाहपुर के विधायक और उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने की। उत्सव के दौरान दो सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जाएगा और इसके अतिरिक्त दिन के समय युवाओं और महिला मंडलों के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं खेलकूद प्रतियोगिताओं में मटका फोड़, रस्साकशी, कबड्डी, वॉलीबॉल सहित विभिन्न पारंपरिक और लोकप्रिय खेलों का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ एंटी चिट्टा रैली भी निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया जाएगा। और भी जानकारियां हैं बहुत सारी अभी आप लोगों के लिए, पहले चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर। कारवां फिल्म का ये गीत अब आ रहा है लता मंगेशकर की आवाज में, तो एंजॉय कीजिए।

जी दिल बर दिल से प्यारे, कारवां फिल्म का गीत सुना आपने अभी लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक बज गए हैं 10 और ये समय होता है एक छोटे से अंतराल का। यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ और अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो जरूर फेसबुक पेज के लाइव सेक्शन में जाकर के हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लीजिए छोटा सा अंतराल लेते हैं हम।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
4: छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। आप जानते ही हैं कि कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला है और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और जिन श्रोताओं ने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए हैं, उन सभी का भी स्वागत। और अब बात कर रहे हैं हम आज के खास दिवस के बारे में, जो कि है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। हर साल ये 17 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बंजर होती भूमि, भूमि क्षरण और सूखे के प्रभावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और इससे निपटने के प्रयास अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1994 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिवस की स्थापना की थी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि मरुस्थल को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है और सामुदायिक भागीदारी और सहयोग से बिगड़ी हुई भूमि को फिर से उपजाऊ बनाया जा सकता है। और मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के का ये दिवस जो है वो चारागाहों यानी कि रेंज लैंड्स पर केंद्रित है और इसका विषय चारागाह पहचाने, सम्मान करें, पुनर्स्थापित करें है। और ये विषय पृथ्वी के आधे से अधिक हिस्से को कवर करने वाले चरागाहों के पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व को उजागर करता है। और अब इस दिवस से मुझे एक बात याद आई। श्रोताओं, हमारे यहाँ पर एक ग्रुप है बना हुआ, वो है ब्रदरहुड 90 ग्रुप। और वो अभी हाल फिलहाल में ही उन्होंने अपना पेज स्टार्ट किया है और मैंने देखना शुरू किया तो मैंने ये पाया कि वो लोग गमरू के रहने वाले हैं, सभी जो यंग लड़के हैं उसमें, और वो अपने प्रयासों से अपने जंगल भी बचा रहे हैं उस तरफ, क्योंकि जंगल भी है तो वो अपने जंगल भी बचा रहे हैं, और अगर कोई वहाँ के खड्डों नालों को गंदा करता है तो उसके ऊपर भी वो बात करते हैं, और वो सब वीडियो बना बना करके उस पर डालते हैं। और इतना ही नहीं, जहाँ पर रास्ते नहीं हैं, दुर्गम स्थान है, वहाँ के लिए वो रास्ता भी बना रहे हैं। अगर रास्ता ख़राब है, टूटा फूटा है, तो वो किसी को दोष नहीं देते हैं कि प्रशासन ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो अपने लेवल पे ही जितना हो सके वो सब करते हैं। और ये सब देख करके दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी चाहें तो बिना किसी के सहयोग से मिलजुल करके आपस में, ऐसा नहीं है कि सहयोग हमें प्रशासन का हमेशा ही चाहिए होता है, बिना किसी सहयोग से, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप प्रशासन को हमेशा ही कोसते रहेंगे और अपने आप कुछ भी नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धर करके निठल्ले बन के बैठ जाएंगे। पहले खुद को देखिए कि आप करते कितना हैं। अगर आप अपना 100% देने की कोशिश करते हैं फिर तो हम किसी दूसरे पर दोषारोपण कर सकते हैं कि उसकी भी थोड़ी सी जिम्मेवारी थी, उसने नहीं की, लेकिन अगर हमने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है तो हम किसी को भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना कि नहीं? बताइएगा ज़रूर। और हाँ, वहाँ पर ना एक सबसे पहला जो मैंने वीडियो देखा था उनका, वो ये था कि जंगल में जब उनके यहाँ पर पानी नहीं आ रहा था तो वो लोग जंगलों में चले गए, और वहाँ पर जहाँ पर कि जहाँ से पाइप्स आती हैं घरों की तरफ, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर पाइप में एक बहुत बड़ा फॉल्ट था। वहाँ से उन्होंने ये दिखाया कि कितना बड़ा जो झरना है वो वहाँ पर, मतलब फाउंटेन है वो बना हुआ है। पहले मुझे लगा कि फाउंटेन जंगल में ये कैसा हो सकता है, लेकिन वो मजाक था, और मजाक और सरकाज़म में इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा संदेश वो लोग दे गए कि देखिए पाइप से वो जो एक हवा के साथ पानी निकल रहा था ना, वो वाकई में फाउंटेन का रूप ले चुका था। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद ये भी उन्होंने दिखाया कि उन्होंने ही अपने लेवल पर उसको किस तरह से रिपेयर किया,

0: और फिर उन्होंने बीड़ा उठाया कि वो अपने आसपास की जगह को साफ भी रखेंगे और लोगों को परेशानी ना हो उसके लिए लोगों को भी अपने साथ जोड़ेंगे और साथ ही साथ वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो दिखाएंगे भी। है ना ये अच्छा इनिशिएटिव। तो चलिए हम भी एक इनिशिएटिव और ले लेते हैं, एक और गीत सुना देते हैं आपको, खूबसूरत सा गीत। और मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि आज के कार्यक्रम में गीत कुछ अलग अलग मूड के हैं। हाल फिलहाल में ही आपने एक रीमिक्स का गीत सुना होगा, धुरंधर 2 फिल्म में बहुत यूज़ हुए हैं सारे के सारे ये जो गीत हैं इनको रीमिक्स करके बनाया गया है और उन्हीं में से एक गीत मैं लेकर के आई हूँ, लेकिन ये ओरिजिनल है। अरमान फिल्म का ये गीत है और इसे गाया है, आप सुनिए और फिर बताइएगा किसने गाया है, हमें तो पता है।
1: गाने सुने अनसुने से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और ये जो गीत अभी आपने सुना ना, इसको सुन करके कुछ ऐसा विजुलाइजेशन होता है कि हम किसी एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर क्लबिंग हो रही है और बड़ा धूम धड़ाका नाच गाना मस्ती हो रही है, और वहाँ पर आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो शायद कुछ गलत चीज़ें भी चल रही हैं। होता है ना ऐसा, तो ऐसा आप ना सोचें क्योंकि ये तो बहुत पुराना गीत बना हुआ है। हाँ, लेकिन इससे संबंधित एक जानकारी है हमारे पास, वो साझा कर देते हैं आप लोगों के साथ। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत इस साल देश भर में विशेषकर शिक्षण संस्थानों में कई तरह की धरातल स्तरीय और ऑनलाइन गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन पहलों का उद्देश्य नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खतरों और इसके नुकसानदायक नतीजों के बारे में जनमानस में जागरूकता बढ़ाना है, और इसके साथ ही देश में नशा वृत्ति को रोकने और नशे की मांग को कम करने के दृष्टिगत जिला कल्याण अधिकारी कांगड़ा ने भी बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से नोडल विभाग कार्यशील है, जिसका आम उद्देश्य लोगों को नशीले पदार्थों के इस्तेमाल से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूक और शिक्षित करना है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि 17 जून से 26 जून 2026 तक चलने वाले इस नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे के खिलाफ इस मुहिम में शामिल हों, और इस मुहिम का समर्थन करते हुए लिंक https://nmba.dosje.government.in/content/takeapledge के माध्यम से भी स्वयं भी शपथ ग्रहण करें और औरों को भी प्रेरित करें। अगली जानकारी लेंगे हम फिर कार्यक्रम में आगे। फिलहाल अब बात करेंगे हम आपसे थोड़ी सी अपने दिल की, और जो भी हमें देख रहे हैं फेसबुक पेज लाइव से, उन सभी का स्वागत है हमारे फेसबुक पेज पर, वेलकम। तो बात मैं ये करना चाह रही थी कि जैसा मैं कार्यक्रम में पहले आते ही मैंने कहा कि मुझे ट्रैफिक के बारे में कुछ बात करनी है, तो रूल्स के बारे में तो सभी को पता होता है, लेकिन हम बात कर रहे थे सड़क पे चलने के सिविक सेंस के बारे में। देखो, यहाँ गाहे बगाहे कभी कभी धर्मशाला में जो है वो बारिश वारिश हो जाती है, और सड़क पर जो खड्डे वड्डे होते हैं वो भी पानी से भर जाते हैं, और इतने दिनों से बारिश नहीं होगी तो ऑब्वियसली, हालांकि सफाई कर्मचारी अपना काम करते हैं, वो सड़कें साफ करते हैं, लेकिन फिर भी कालक तो होती है ना, कीचड़ तो होता है, तो वो कीचड़ से भर जाते हैं अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो। लेकिन जो लोग होते हैं ना, जो टू व्हीलर सवार भी कह लूँ या फोर व्हीलर सवार भी कह लूँ, तो वो लोग ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि किस तरह से उन्हें अपनी गाड़ी को चलाना है, और उन दिनों में ख़ास करके कि हर आने जाने वाले का ध्यान रखा जाए, वो लोग भगाते हुए अपनी गाड़ियाँ निकालते हैं और ये नहीं सोचते कि कोई हो सकता है इंटरव्यू के लिए तैयार होकर के कहीं जा रहा होगा, और क्योंकि अभी तो उसकी नौकरी ही नहीं लगी तो उसके पास पैसे भी कहाँ हैं कि वो किसी ट्रैफिक माध्यम का इस्तेमाल कर सके, तो उसके ऊपर इस तरह से कीचड़ उछालते हुए चले जाते हैं कि उसके दुख का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं रहता, और वो मन ही मन, चाहे वो कुछ भी ना कहे, लेकिन जो उसके मन से वह दुआएँ निकलती होंगी वो किसे रखती होंगी जा कर के। तो देखिए श्रोताओं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने थूकने की बात कही कि ऐसे ही बिना सोचे समझे सड़क पर थूकते चले जाते हैं, अब वो चाहे
गाड़ी चलाते हुए लोग थूकते हों या चलते सड़क पे जो पैदल चलते हुए लोग हैं वो थूकते हों, बात तो एक ही है ना। चल तो आप सड़क पर ही रहे हैं या कहीं पर भी रहे हैं, आप थूक रहे हैं तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और भी सड़क पर चलने के बारे में देखिए बात एक और बताती हूँ। कई बार होता क्या है ना कि जैसे ही किसी ने देख लिया कि आराम से पहले बड़े आराम से चला हुआ है व्यक्ति, लेकिन जैसे ही उसने ये पाया कि साथ वाली लड़की, लड़की छोड़ो कोई लड़का भी, उसको ओवरटेक करके आगे निकल गया है, तो पता नहीं कहाँ से भाई उनमें बाहुबली की शक्ति आ जाती है और वो अपना जो भी टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है ऐसे भगाते हैं, ऐसे भगाते हैं, चाहे वो खुद मोबाइल पे बात कर रहे हों, लेकिन क्योंकि किसी ने ओवरटेक कर लिया है तो भाई अब वो तो रेस में पीछे रह गए हैं। अब ये तो जंग का अखाड़ा बन गया है, सड़क नहीं है, बस उसके पीछे ऐसे भगाओ कि उसको हरा के ही मानो। और अगर सामने वाला जिसने ओवरटेक किया है वो इतना ज़िद्दी है कि वो आपको आगे नहीं जाने देता है ना, तो आप फिर उतर करके उससे लड़ाई भी करते हो और हो सकता है उसे एक दो जड़ भी दो। ये कहाँ की सिविक सेंस है। तो भाई सड़क पे चलने के लिए सिर्फ ट्रैफिक रूल्स काफ़ी नहीं है, आपकी कुछ कॉमन सेंस भी होती है, उसे भी यूज़ कर लेना चाहिए। आगे वाले वाहन से थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए, क्या पता आगे वाला वाहन कब किस मूड में है, क्या उसने देखा नहीं देखा और उसने अचानक से ब्रेक लगा दी और फिर आप जो है वो उसे ही दोष देंगे कि भाई तुमने हमारी गाड़ी बजा दी, तो ये नहीं सोचेंगे कि आप भी तो उसी के साथ चिपक के चल रहे थे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे याद आती जाएंगी, मैं करती जाऊंगी कार्यक्रम में आगे आप लोगों के साथ। एक और गीत का समय हो गया है, यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला के सेट पर भी, यानी अपने रेडियो सेट्स पर भी और हमारे फेसबुक पेज पर लाइव भी। और कालीचरण फिल्म का ये गीत अब आ रहा है आप सभी के रेडियो सेट्स पर लता मंगेशकर की आवाज़ में, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें हैं।

तो लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना कालीचरण फिल्म का ये गीत। 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में 10:30 होने को हैं, बस ले लेते हैं छोटा सा अंतराल और फिर जल्दी से आएंगे आपसे करने बातचीत।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
4: तो छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला है, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। अगली जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला के प्राचार्य ने जानकारी देते हुए बताया है कि पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 11वीं वाणिज्य संकाय की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इसके लिए अभ्यर्थियों की जन्मतिथि 1 जून 2009 से 31 जुलाई 2011 के तक के अभ्यर्थी मान्य होंगे और अभ्यर्थियों ने शैक्षणिक स्तर 2025-26 में कांगड़ा जिला के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 10वीं में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, जबकि गणित विषय लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए गणित विषय में न्यूनतम 60% अंक से पास होना अनिवार्य है। इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थी लिंक बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। /d/e/1fa/lp/qlse/1fa/lp/qlse/1fa/lp/qlse/1va/felqea/jupg/lmrsu/7oocenj/rka/view/form?USP=2 प्रीव्यू गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना 25 जून 2026 तक आवेदन भर सकते हैं।

0: और आगे कौन कौन सी जानकारियां हैं ये हम आगे ही बात करेंगे कार्यक्रम में। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक। खूबसूरत सा गीत आ रहा है आप सभी के रेडियो सेट्स पर, लता मंगेशकर और भगवान दादा की आवाजें हैं, अलबेला फिल्म का नाम।
1: सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है। मैं लाइक करती हूँ।

जी श्रोताओं, अभी आपने सुना बड़ा ही खूबसूरत सा गीत, अलबेला फिल्म का ये गीत था, लता मंगेशकर, सी रामचंद्रा, भगवान दादा और साथियों की आवाजों में। कैनवे दशमलव 2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और ये जो शोला भड़कता है ना, और ये जो गीत में कहा गया कि हाँ भाई दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के, ये बात सही भी है। और यही वो दिन होते हैं कि जब जो युवा बच्चे होते हैं हमारे, या तो वो अपना करियर बनाने पे फोकस कर लेते हैं और या फिर इधर उधर की बातों में या कुछ नए नए प्रयोग करने में लग जाते हैं, और वो प्रयोग जो हैं वो अच्छी दिशा में हो तब तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर गलत दिशा में चले जाएं और वो उनकी सेहत से खिलवाड़ करने लग जाएं तो फिर बड़ी ही चिंताजनक बात हो जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा 15 नवंबर 2025 को आरंभ किए गए प्रदेश व्यापी एंटी चिट्टा जन आंदोलन के अंतर्गत चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को साकार करने हेतु हिमाचल प्रदेश पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ द्वारा नशा तस्करी के विरुद्ध राज्य भर में निरंतर सुनियोजित और कठोर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 15 जून 2026 को हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा राज्यभर में एक विशेष सत्यापन और प्रोफाइलिंग अभियान संचालित किया गया, और इस अभियान के अंतर्गत अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीपीएस मामलों में गिरफ्तार किए गए हिमाचल प्रदेश के 278 निवासियों तथा हिमाचल प्रदेश में एनडीपीएस मामलों में गिरफ्तार अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 382 निवासियों का विस्तृत सत्यापन और प्रोफाइलिंग की गई, और राज्य के सभी जिलों में एक साथ चलाए गए इस समन्वित अभियान के दौरान कुल 660 व्यक्तियों का सत्यापन किया गया तथा उनकी पृष्ठभूमि, आपराधिक गतिविधियों, वर्तमान स्थिति, स्थानीय संपर्कों और नशा तस्करी से संबंधित संभावित नेटवर्क का आकलन किया गया।

तो श्रोताओं, हम सभी की ये जिम्मेवारी है कि हम अपने युवा होते हुए बच्चों को, टीनेजर्स, टीन शुरू हो जाता है ना 13 से, तो ज़रूरी नहीं है कि आजकल तो ये लागू सिर्फ टीनेजर्स के लिए ही होता है, ये तो कोई भी हो व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को इसकी लत लग सकती है।

हम अवेलेबल रहते हैं ना हर चीज़ के लिए कि हाँ ठीक है जी, हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। इससे लोग हमारा गलत फ़ायदा भी उठाते हैं और वो फ़ायदा उठाते चले जाते हैं, और हमें लगता है कि हम हमारी तो बड़ी वो इज्जत करते हैं, हमें हर जगह पे बुलाया जाता है, हमें फ़ोन कॉल करके ये कह दिया जाता है कि यहाँ आ जाना वहाँ आ जाना, लेकिन मकसद उसके पीछे क्या होता है वो समझना भी हमको ही ज़रूरी है। तो जल्दी समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है और सेहत ज़िंदगी जो ख़राब होती है उससे फिर निकलने के लिए, मैं चिट्टे की बात कर रही हूँ, नशे की बात कर रही हूँ फ़िलहाल, तो फिर उससे निकलने के लिए उम्र भर व्यक्ति तड़पता है। निकल भी आते हैं कई लोग, ऐसा नहीं है कि निकलते नहीं हैं, और वो एग्जाम्पल बनते हैं हमारे समाज के लिए, परंतु कितना संघर्ष उन्होंने कर लिया होता है, कितना लाइफ स्पैन उन्होंने खो दिया होता है, और फिर पछताने के अलावा और कोई चीज़ रहती नहीं है उनके पास कि अब हमने तो अपनी ज़िंदगी के सुनहरे पल खो दिए। थोड़ा सोचिए समझिए, और अगर आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह से इन चीज़ों में संलिप्त हैं, या तो उनकी जानकारी दीजिए, और अगर कोई करता है जो छूटना चाहता है छूट नहीं पा रहा है तो उसकी थोड़ी मदद कीजिए। यही कर सकते हैं हम, और हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद इन चीज़ों में ना पड़े हों, इनसे बाहर हों, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति तभी हमारे पास होगी, तभी हम दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। चलिए चलें अगले गीत की ओर। देखो जी, अब तो कांटा भी लग गया है। समाधि फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, आइए सुनते हैं, समझ गए होंगे आप।

जी, बंगले के पीछे तेरी, बेरी के नीचे। ये गाना सुना आपने 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। समाधि फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, अब हमारे पास दो और ऐसी जानकारियां हैं आपको देने के लिए कि हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों कुल्लू, कांगड़ा तथा शिमला में हिमरंग षष्ठी नाट्य उत्सव का आयोजन 18 से 27 जून तक किया जाएगा। और ये जानकारी देते हुए निदेशक भाषा और संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश रीमा कश्यप ने बताया कि विभाग के अतिरिक्त हिमाचल कला संस्कृति और भाषा अकादमी शिमला तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रिपर्टी कंपनी दिल्ली और गेटी ड्रामेटिक सोसाइटी शिमला के संयुक्त तत्वाधान में रिपर्टी कंपनी की स्थापना के 60 साल की रंगमंचीय यात्रा के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। और NSD रिपर्टी कंपनी के प्रमुख राजेश सिंह भी तीनों आयोजन स्थलों पर उपस्थित रहेंगे। रीमा कश्यप ने भी बताया है कि हिमरंग षष्ठी नाट्य उत्सव के प्रथम संस्करण का शुभारंभ 18 जून को कुल्लू स्थित अंतरंग अटल सदन सभागार से होगा और इस अवसर पर NSD रिपर्टी कंपनी के कलाकारों द्वारा 18 जून को मायरी मैं कासे कहूँ, 19 जून को ताजमहल का टेंडर और 20 जून को बाबूजी नामक नाटक का मंचन किया जाएगा, जबकि दूसरे संस्करण में धर्मशाला कॉलेज के अंतरंग सभागार में यानी कि हमारे ऑडिटोरियम में 22 जून को, याद रखिएगा डेट, 22 जून को धर्मशाला में हिमाचल में ताजमहल का टेंडर तथा 23 जून को बाबूजी नाटक का मंचन होगा, यानी कि धर्मशाला में हमारे कॉलेज के ऑडिटोरियम में 22 जून को ताजमहल का टेंडर तथा 23 जून को बाबूजी नाटक का मंचन होगा। और इसके अलावा तीसरे संस्करण में शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर के गोथिक थिएटर में 26 जून को अक्ष तमाशा और 27 जून को मायरी मैं कहाँ से कहूँ नामक नाटकों का मंचन किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के रंगमंच कला प्रेमियों से अपील की है कि वे इन नाटकों में सम्मिलित होकर के प्रस्तुतियों का भरपूर आनंद लें। तो जितने भी कला प्रेमी हैं मेरे जैसे, वो चले जाइएगा अपनी अपनी जगहों पर जहाँ पर भी आपको सहूलियत हो और जाकर के ज़रूर अवलोकन कीजिएगा, देखिएगा। अब जो लोग तो हमारे रेडियो सेट्स के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे श्रोता, उन्होंने तो सुन ली है ये बात, और जो हमें फेसबुक पेज से लाइव देख रहे हैं या अभी नहीं भी देख रहे हैं बाद में देखेंगे, उन सब को भी हम बता देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर भी ये सारे मंचन होंगे, तो आप लोग ज़रूर जाइएगा, देखिएगा। और अब आपको जाते जाते बता देते हैं कि आज विश्व मगरमच्छ दिवस भी है, हर साल 17 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लुप्त प्राय मगरमच्छों, घड़ियालों और एलिगेटर्स के संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। मगरमच्छों के संरक्षण, उनके सामने आने वाले खतरों और इस दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां सभी लोगों तक पहुंचाना ही इस दिन का मुख्य उद्देश्य होता है। इसकी शुरुआत क्रोकोडाइल रिसर्च कोलिएशन और बेलीज चिड़ियाघर द्वारा की गई थी। मगरमच्छ और घड़ियाल नदियों और दलदली क्षेत्रों के पारिस्थितिक तंत्र के शीर्ष शिकारी होते हैं, जो जल और स्थल के बीच में संतुलन बनाए रखते हैं। तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे ही बेकार नहीं होती है श्रोताओं। जैसे कि हमें देखने में लगता है ना मगरमच्छ, ओहो हमें डर भी बड़ा लगता है उससे, घड़ियाल से। कभी जू में जाते हैं तो देखा है ना आपने मगरमच्छ, तो बस वही होता है मगरमच्छ, जिसके खूब सारे बड़े बड़े से दांत होते हैं, जिसे देख करके बहुत डर लगता है आपको। हाँ मुझे भी। तो ये थी मगरमच्छों के बारे में जानकारी थोड़ी सी, जो कि हम बस थोड़े ही शब्दों में आप तक पहुंचा पाए, क्योंकि समय की भी कमी है। और आगे बढ़ते बढ़ते अब हमें आपको एक गीत भी सुनवाना है। हम ट्रैफिक की बात कर रहे थे, रास्तों की बात कर रहे थे, और जाते जाते अब फिर से आपको रास्तों पर ही छोड़े चले जा रहे हैं।

और इसी गीत के साथ ज्योति पठानिया को दे दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। राहों पे अगर रहते हैं आप लोग भी, मतलब चलते हैं, तो ध्यान रखिएगा भाई जिन बातों को भी आज हमने आपसे कहा है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
4: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कुछ लोग गलती करने के बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना उन्हें पछतावा होता है ना अपने कर्मों का डर, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन याद रखो पार्थ, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का प्रहार सबसे देर से पर सबसे गहरा होता है। समय शांत जरूर रहता है पर हर कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है, और जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता।
2: ए यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो, आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई।
5: तुम घर छोड़ के जा रही हो?
4: मेरी जॉब लग गई है।
5: अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है, तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना।
4: आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना है।
5: गुड गुड, जाओ पैकिंग करो।
4: हाँ, मैं पैकिंग कर लेती हूँ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
4: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कुछ लोग गलती करने के बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ना उन्हें पछतावा होता है, ना अपने कर्मों का डर, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन याद रखो पार्थ, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का प्रहार सबसे देर से पर सबसे गहरा होता है। समय शांत जरूर रहता है, पर हर कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है, और जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता।
2: अरे यार, फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही उंगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो, आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई।
5: तुम घर छोड़ के जा रही हो?
4: मेरी जॉब लग गई है।
5: अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है, तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना।
4: आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना है।
5: गुड गुड, जाओ पैकिंग करो।

0: यस।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ एक बार आप सभी फिर से जुड़ चुके हैं इस बहुत ही खास कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं दोस्तों कार्यक्रम की एक और कड़ी लेकर आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम मन संवाद, एक प्रयास मन के और। तो हमारा ये प्रयास कितना आप सभी तक पहुंच रहा है ये तो आपके फीडबैक या फिर आपके सवालों से पता चलेगा। और आई होप सो कि आप बहुत अच्छे अच्छे सवाल और बहुत अच्छी अच्छी जो हमें एडवाइस दे रहे हैं या दे सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह से आप सभी का सहयोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में बना रहना चाहिए। तो स्वागत है मैम आपका इस बहुत ही खास कार्यक्रम में, बहुत ही खास बातचीत में, जिसमें कि हम अपने दोस्तों के लिए बहुत ही खास खास जानकारियां उनकी अवेयरनेस के लिए लेकर आते हैं।
2: थैंक यू सो मच रुचिका
1: जी। तो कैसे हैं मैम आप?
2: हम अच्छे, आप कैसे?
1: बहुत बढ़िया। तो मैम पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है हमारे लिए, क्योंकि अक्सर हम यही सुनते हैं कि पर्सनैलिटी किस तरह से मेंटेन करनी है, बस यही सोचते हैं हमेशा, और एक दूसरे से बस दिखावे के लिए हम एक तरह से जेलेसी फैक्टर भी आ जाता है कि नहीं
2: किसी,
1: है ना, कंपटीशन बन जाता है। बट डिसऑर्डर की तरफ जो है हमारा ध्यान नहीं जाता, तो इसीलिए हम अपने दोस्तों को इस बारे में जानकारी पिछले कड़ी में पहुंचाई थी। और हम क्लस्टर्स की बात कर रहे थे, तो ए बी क्लस्टर की हमने बात की थी। तो मैम थोड़ा सा शॉर्ट में हम अपने दोस्तों को उसको एक बार रिकैप करें।
2: बिल्कुल जी। देखिए, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके थॉट, इमोशंस और व्यवहार क्रोनिकली यानी कि बहुत लंबे समय तक एक जैसे ही रहे हैं, उनका एक प्रकार का बिहेवियरल पैटर्न है जो कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट है, वो परिस्थितियों के साथ बदलता नहीं है, वो बार बार रिपीट होता है। और जब ऐसा होता है तो उनको या उससे भी ज्यादा उनके आसपास के जो एनवायरमेंट में लोग प्रेजेंट होते हैं उन्हें दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जिनको होता है उनका जो एनवायरमेंट होता है उनको उन लोगों को काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ जाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जिन्हें है उन्हें इंसाइट ही नहीं होती, अवेयरनेस ही नहीं होती कि हम में भी कोई प्रॉब्लम है या हमें अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें लोगों को एक प्रकार की अवेयरनेस होती है, इंसाइट होती है कि ठीक है मैं अपने ऊपर काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब ऐसे लोग थेरेपी सेशंस के लिए आते हैं तब उनमें इम्प्रूवमेंट्स देखना ज्यादा आसान और बेहतर हो जाता है, लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पर इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप ही नहीं बचता क्योंकि उनमें इंसाइट ही नहीं होती अबाउट देयर रॉन्ग बिहेवियर्स और अनहेल्दी बिहेवियरल पैटर्न्स। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को साइकोलॉजी में तीन अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है। हम लोग पिछले जो सेशन था उसमें हम लोगों ने क्लस्टर ए और बी को अंडरस्टैंड किया।
1: बिल्कुल।
2: क्लस्टर ए में हमारे थे पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसमें हमारा स्किज़ोटिपल एंड स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी थे। ऑन द अदर हैंड क्लस्टर बी में हमने डिस्कस किया था बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके बाद अब बात आती है क्लस्टर सी की, क्लस्टर सी जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड OCPD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आज तक आपने OCD सुना होगा या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर सुना होगा, लेकिन ये एक अलग कैटेगरी है जहां पर हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ऑब्सेसिव और कंपल्सिविटी के ट्रेट्स को देखते हैं।
1: सबसे बड़ी बात तो मैंने पहले कहा ना मैम कि हमारे लिए तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम ही नया है, लेकिन उसके आगे भी कुछ और कैटेगरी है, तो ये तो और ज्यादा हमारे लिए जानने के लिए ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करेंगे कि आप भी इसे बहुत अच्छे से सुनेंगे और बहुत अच्छे से इस बात को समझेंगे, और अगर ऐसा हो तो हमें कितना केयरफुल रहने की जरूरत होती है और किस तरह से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं इन सारे डिसऑर्डर्स से। तो फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम फिर से वापस आते हैं अपनी इस पर्सनैलिटी को और ज्यादा मेंटेन करने के लिए, डिसऑर्डर को दूर करने के लिए। तो बने रहिए आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से इस छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सभी के इस मनपसंद कार्यक्रम मन संवाद एक प्रयास मन की ओर। तो आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर की क्लस्टर सी की। तो मैम आपने अभी इस छोटे से ब्रेक से पहले बात की क्लस्टर सी में भी डिफरेंट कैटेगरीज है, तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं अवॉइडेड डिसऑर्डर के बारे में। तो उसमें किस तरह से पर्सन को चीजें फेस करनी पड़ती हैं या कैसे पता कर सकते हैं हम कि वो जो कैटेगरी है हम में आनी शुरू हो गई है?
1: देखिए, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो व्यक्ति होते हैं जिनमें एक प्रकार का फियर बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट रहता है, और वो फियर होता है फियर ऑफ रिजेक्शन या फियर ऑफ बीइंग जज्ड और फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड। ऐसे लोग वो होते हैं जिन्हें अपनी बुराई या अपनी खामियां अगर उन्हें कोई बता दे तो उन्हें बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, पिंच हो जाता है, उनकी ईगो हर्ट हो जाती है, और यहीं से ही उनके बाकी के बिहेवियर्स ऑपरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो सोशल इंटरेक्शंस या फिर सोशल रिलेशनशिप्स को मेंटेन नहीं कर पाते। उनका लाइफ का बिगेस्ट चैलेंज ही यही रहता है कि वो रिलेशन में अगर लेट्स से आ भी जाते हैं तो भी उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि किसी भी रिश्ते को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए जरूरी होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, और वो कॉन्फ्लिक्ट से भागते हैं, वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है अपनी गलतियों पर नजर डालना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, उन पर काम करना, और यही सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए जिनको अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है।
0: गलती एक्सेप्ट करना, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। सब सही बात है ये मैम कि हर कोई, हमें क्या आदत होती है ना दूसरों को ब्लेम कर देना, लेकिन कभी भी अपनी गलतियों पे काम करना ये तो हमारे लिए जैसे आफत ही हो जाती है। तो इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं?
1: देखिए, जो भी जैसे अवॉइडेंट है और इसके बाद जब हम लोग डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी डिस्कस करेंगे, तो देखिए ये दोनों ही पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो हमारे अटैचमेंट स्टाइल के आधार पे डेवलप होते हैं। अटैचमेंट स्टाइल की अपनी एक बहुत ही आसान सी थ्योरी है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसे मानिए कि अगर एक छोटा बच्चा अपनी प्रॉब्लम को लेकर अपने पेरेंट्स के पास जाता है और पेरेंट्स अपने ही किसी परेशानी में या किसी परिस्थिति में व्यस्त है, और वो गया और बोला पापा पापा देखो क्या हो गया, उसको चोट लग गई, लेट्स से देखो क्या हो गया, लेकिन पापा ने उसको अच्छे से एड्रेस करने की बजाय उसको डांट दिया कि ये क्या करके आए हो, मैं तो बोलता हूँ तुम काम ठीक से नहीं करते हो, मुझे काम करने दो, खुद तो कुछ किया नहीं, मुझे भी नहीं करने दोगे, जाओ उधर जाकर बैठ जाओ। अब ये बच्चा ऐसे बिहेवियर के बाद अपने पापा के पास क्या दोबारा जा पाएगा कंफर्टेबली?
0: बिल्कुल भी नहीं।
1: नहीं, यानी कि बचपन में ही जो एक चाइल्ड और पेरेंट का कनेक्शन होता है, उनका जो कम्युनिकेशन होता है, जो बॉन्ड है, उसके आधार पर बच्चा ये परसीव करने लगता है कि क्या मैं अपने चैलेंजेस या नीड्स को सामने वाले व्यक्ति के पास ले जाने के लिए कंफर्टेबल हूँ या नहीं, मैं सामने वाले व्यक्ति पर कितना रिलाई कर सकता हूँ या नहीं। ये सब डिपेंड करता है कि एक पेरेंट चाइल्ड को कैसे डील करता है।
0: बिल्कुल सही कहा दोस्तों मैम ने, क्योंकि अक्सर वही बात बार बार एक ही बात आती है। बच्चों से जुड़ी बात करें तो मेन रोल जो आता है वो पेरेंट्स का ही आता है कि पेरेंटिंग किस तरह से है। पेरेंट्स बोलना तो आसान है लेकिन उस रोल को निभाना उतना ही मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि माँ बाप जो है सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस वर्क या जो भी है घर का काम, और शाम को उनका भी ये होता है कि नहीं अब जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन, या तो दिन भर का गुस्सा जो होता है उनके दिमाग में चल रहा होता है और एकदम से बच्चे ने आके कुछ पूछ लिया तो वो उसे डांट डपट कर शांत करा देंगे या तो उसे साइड भेज देंगे, रूम में भेज देंगे। तो बच्चा जो तभी तो आज का टाइम ये इसलिए आया है कि बच्चा खुलकर पेरेंट से बात कर ही नहीं पाता है। वो अपने मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, जो भी उसको परेशानियां हो रही है, चाहे स्कूल में उसके साथ किसी की लड़ाई हो गई है, कल को उसको पता नहीं किस सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन वो पेरेंट से खुलकर बात, क्योंकि उसे पता डांट पड़ेगी।
1: उसको यही है कि पेरेंट को पता ना वो मुझे बहुत डांटेंगे या वो परेशान हो जाएंगे, और परेशान होंगे तो क्या होगा, मुझे
0: डांट पड़ेगी।
1: तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करना सीख ही नहीं पाते, और यहीं से फिर शुरुआत हो जाती है अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल की। अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल जो है वो आम व्यक्तियों में भी होता है, लेकिन जब ये अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल एक बड़े रूप में अपनी उनकी पर्सनैलिटी में एक जब छाप छोड़ जाता है तब जाकर वो बनता है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।
0: बिल्कुल, तो अवॉइड करना तो खैर जब हमें कोई अवॉइड करे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ अपनी अंदर की जो हमारी कुछ ऐसी बोलते हैं हैबिट्स होती हैं, उन्हें सुधारना, तभी हम सुधार पाएंगे जब हम उसे अच्छे से रियलाइज कर पाएंगे। समय के साथ उन्हें पहचानना, समय के साथ उस चीज को समझना, और उसके लिए मैम मुझे लगता है कि जरूरत रहती है हमें खुद को समय देने की। पेरेंट्स का समय बच्चों के लिए अलग बात है, लेकिन बच्चे भी खुद को समझने के लिए सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने क्या किया है, कहाँ कमी रही है, कहाँ उन्होंने अच्छा भी किया है। जरूरी नहीं हम कमी की बात करें, कुछ चीजें अच्छी भी हुई होती हैं उनके साथ।
1: बिल्कुल, देखिए इसके बारे में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे तो आपको एक नया पहलू समझने को मिलेगा।
0: जी,
1: असल में क्या है, जब हम लोग डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं ना रुचिका, तो यहाँ हम लोग बड़े बड़े ट्रॉमास के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि रिपीटेटिव बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब पेरेंट्स इस प्रकार का बिहेवियर रिपीटेटिवली करेंगे, तब जाकर अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल डेवलप होगा और वहां से शुरुआत होगी, वो एक बीज डल जाएगा और फिर बड़ा होकर पेड़ क्या बनेगा, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये बात है तब की जब इंटेंसिटी ड्यूरेशन और फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, रिपीटेशन है। तो बच्चा अपने पेरेंट के साथ कैसे एसोसिएट करेगा, इसी प्रकार से कि छोड़ो उनके पास जाके प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नहीं,
0: नहीं हो,
1: मुझे खुद से ही करना पड़ेगा, तो वो खुद से ही हर चीज करेगा। और खुद से करने के चक्कर में क्या होगा, वो दूसरों के साथ एसोसिएशंस क्रिएट करना नहीं सीख पाएगा। यहाँ तक कि जब भी कोई भी ऐसा चैलेंज आएगा बड़े होने के बाद एज एन एडल्ट, कोई रिलेशनशिप में है, रोमांटिक रिलेशन लेट्स से, या कोई फ्रेंडशिप है, वहां कोई चैलेंज आता है और सामने वाला पार्टनर कहता है कि नहीं इस बारे में मुझे बात करनी, तो बोलेगा मुझे कोई बात ही नहीं करनी है, क्योंकि उनके लिए वो चीज एक प्रकार से बहुत एंजाइटी क्रिएट करेगी, उनको बहुत एंग्जियस फील देगा। क्योंकि जब जब बचपन में वो अपने पेरेंट के पास जाते थे टू कन्फ्रंट व्हाट दे आर गोइंग थ्रू और व्हाट दे आर यू नो इनसाइड ऑफ देम, जो हो रहा है, जो असल में उनके ऊपर जो बीत रही है,
0: थॉट्स चल रहे हैं,
1: जो भी उन्होंने शेयर किया, उसके बाद क्या मिला उन्हें, उन्हें मिला
0: डांट,
1: उन्हें मिला निगलेक्ट, उन्हें मिला नॉट सो केयरिंग रिस्पॉन्स। तो उनको ये लगता है कि मैं ये डिजर्व ही नहीं करता, और क्योंकि मैं डिजर्व नहीं करता, या सामने वाला मुझे वो देगा ही नहीं, या सामने वाला शायद उतना कैपेबल ही ना हो, इनफैक्ट यहाँ तक कि मुझे चाहिए ही नहीं, तो व्यक्ति एक समय के बाद गिव अप कर चुका होता है, तब जाकर अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल डेवलप होता है और वहां से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की शुरुआत होती है।
0: बिल्कुल, तो इसके बारे में हम और भी जरूर जानेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले फिर से चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की ओर, उसके बाद फिर से आप सभी से मिलते हैं। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी, तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आप सभी अपने इस बहुत ही खास कार्यक्रम और खास बातचीत के साथ। तो आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दोस्तों पर्सनालिटी डिसऑर्डर की डिफरेंट कैटेगरीज की, क्लस्टर्स की, सी क्लस्टर की हम बात कर रहे हैं आज की इस खास बातचीत में। तो आइए मैम से जानते हैं, बहुत कुछ जानने को है, बहुत कुछ जो है आपके लिए अवेयरनेस से जुड़ी बातें हैं, तो जरूर इन बातों को ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगी। कहीं ना कहीं जब हम बच्चों को समझ नहीं पाते हैं या बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पाते हैं, या हमें जो ये मैम ने कहा कि जो ये बिहेवियर बार बार जो हम रिपीट करते जाते हैं, तो एक ऐसी स्टेज में फिर हम पहुंच जाते हैं जो ये डिसऑर्डर हम फेस करना शुरू कर देते हैं। तो इसी के लिए हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये चीजें हो रही हैं तो इसके किस चीज में हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो यही सब जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते हैं ताकि आप इन चीजों से ना गुजरें, और अगर गुजर रहे हैं तो शुरुआती दौर में ही अपने आप को संभाल लें और बच्चों की जिंदगी को संभाल लें। तो मैम हम बात कर रहे थे अवॉइडेड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, हमने बात की, और अभी हम बात करते हैं डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। तो उसमें हम किस तरह से मतलब कि उसे किस तरह से फेस करते हैं?
1: देखिए, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है इसके पीछे भी एक अटैचमेंट स्टाइल है।
0: ओके
1: उसको बोलते डिपेंडेंट अटैचमेंट स्टाइल, है ना
0: जी।
1: उसको एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल भी बोला जाता है। देखिए, ये उन बच्चों में डेवलप होता है ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर जो बचपन में अपने पेरेंट्स के पास गए और उन्होंने एक बार बोला कि हाँ बेटा चलो चलो क्या हो गया, हम आपकी मदद करते हैं, और दूसरी बार बोला कि हर बार मेरे पास ही आ जाता है, चल दूर हटो।
0: बिल्कुल।

0: यहाँ पर आ गई कंफ्यूजन। तो पहले तो
1: आराम से
0: आपने रेपिटेटिवली बच्चे को हर काम में सहायता दी,
1: बिल्कुल,
0: बच्चे को आपने ऑटोनोमी नहीं सिखाई, बच्चे को आपने डिपेंडेंट कर दिया, और अब आप कह रहे हो कि चलो हटो खुद से करो जाके।
1: एकदम से
0: आपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनने के टूल्स नहीं सिखाए। ऐसे में बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चे को जीवन के चैलेंजेस को फेस करते वक्त ये लगेगा मैं परेशानी में हूँ तो मैं अपने सीधा पेरेंट्स के पास भागूं। पेरेंट्स के पास जाएगा और हर बार जाएगा क्योंकि उसके पास अपने चैलेंजेस को सॉल्व करने के टूल्स ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है परेशानी सॉल्व कैसे होगी या करना क्या है।
1: बिल्कुल।
0: अब ऐसे में पेरेंट्स को भी बहुत प्राइड फील होता है कि ओके देखा मैंने बोला था मेरे पास आओगे तो ही तुम्हें सोल्यूशन मिलेगा।
1: बिल्कुल।
0: पर एक समय ऐसा आएगा जब पेरेंट्स बोलेगा अब तो मैं नहीं करूंगा, अब तो तुम्हें खुद से करके देखो। तो यानी कि बच्चे के पांव से आपने तुरंत जमीन खींच ली। अब बच्चा घबरा जाएगा। अब जो बच्चा घबराएगा उसको एंजाइटी फील होगी, उसको इनसिक्योरिटी होगी कि अब मैं क्या करूं। अब उसे पता ही नहीं है कि प्रोसेस कैसे करना है, कि मैं अपने आप को फंक्शनल कैसे रखूं। ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। इस तरह के अटैचमेंट स्टाइल को बोलते हैं डिपेंडेंट और एंग्जियस अटैचमेंट स्टाइल। इसमें एक व्यक्ति के अंदर, एक बच्चे के अंदर फियर काफी रहता है। फियर किस चीज का, इस चीज का कि मैं अकेला रह गया तो।
1: बिल्कुल। और होता है अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है,
0: मैं अकेला रह गया तो मैं कैसे संभालूंगा चीजें, मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे किसी की सपोर्ट की ही जरूरत है। तो उनके अंदर डिपेंडेंसी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी ऑन देयर रिलेशंस। धीरे धीरे ये उनके पर्सनैलिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत वाइटल पार्ट बन जाएगा और आने एज एन एडल्ट उनके अंदर ही डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाएगा। ऐसे जो लोग होते हैं नरोचिका, ये लोग अपने लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पाते हैं,
1: डिपेंडेंट हो चुके होते हैं।
0: सो दीज आर द वंस हु विल सीक वैलिडेशन, मैं सही तो कर रहा हूँ ना, गलत तो नहीं कर रहा हूँ,
1: मतलब वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका मतलब डेवलप ही नहीं हो पाता।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग कॉन्फिडेंस में रहेंगे, वो अपनी वर्थ को डाउट करेंगे, अपने पोटेंशियल को डाउट करेंगे, वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने में उनको काफी चैलेंजेस आएंगे। लेकिन क्योंकि इनसाइट होती है इस प्रकार के सिनेरियो में अधिकांश लोगों में, तो अधिक वो उसके अकॉर्डिंगली इनमें जो इम्प्रूवमेंट है वो इजीली देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, अपने ऊपर चैलेंज को फेस करना पड़ता है, अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, उसको बिल्ड करना पड़ता है। इवन इन थेरेपीज वी बिल्ड अ पर्सन सेल्फ वर्थ, वी बिल्ड हाउ अ पर्सन परसीव्स देमसेल्व्स, वी बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस एज वेल। तो जब ये चीजें पॉसिबल हो जाती हैं तो एक व्यक्ति का डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनना भी पॉसिबल हो जाता है।
1: तो मैम ये क्या मतलब एनवायरमेंटली ऐसा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की लापरवाही की वजह से ही ये डिसऑर्डर हमें फेस करना पड़ता है, मतलब बच्चों को या पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ फिर डील करना मुश्किल हो जाता है।
0: देखिए कोई भी, सिर्फ यही नहीं, कोई भी डिसऑर्डर होता है ना, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, तो उसमें तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तीन चीजों से बेसिकली, ऐसा माने कि तीन तत्व है, ये तीन तत्वों से मिलकर हमारा मेंटल हेल्थ, हमारी साइकोलॉजी, एक व्यक्ति का बिहेवियर डेवलप होता है। वो क्या है, व्यक्ति की खुद की सोच और खुद की वैल्यूज, खुद का एक जो विवेक होता है। हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग विवेक है। दो बच्चे जो सेम वातावरण में पले बड़े हों, जिनको सेम प्रकार की शिक्षा, सेम स्कूल में भेजा गया हो, सेम फाइनेंशियल बैकग्राउंड और सेम जीन्स हों, वो दोनों बच्चे भी अलग अलग निकलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि दोनों व्यक्ति, हर व्यक्ति का एक अपना यूनिक माइंडसेट होता
1: है, सोचने का अलग तरीका है।
0: तो ये हो गया उनका माइंडसेट। दूसरा होता है उनका सोशल इन्वायरमेंट, यानी कि उनका परिवार, उनके परिवार में उनके रिश्ते कैसे हैं, परिवार वालों के आपस में रिश्ते कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं, स्कूल में टीचर्स कैसे हैं, व्यक्ति के एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं लाइफ में। और तीसरा होता है हमारे जीन्स, हमारे फैमिली में एंसेस्टर्स से हमें क्या इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई है, हमारी हेरिडिटी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन, हमारे डीएनए में क्या कुछ है। ये इस प्रकार से है जैसे कि कोई व्यक्ति था जो कभी भी दारू नहीं पीता था और उसको लिवर कैंसर हो गया, समझ रहे हैं। अब इसका कॉज क्या उसकी हैबिट थी या बिहेवियर था, नहीं। क्या इसलिए हो गया क्योंकि उसके पड़ोसी या उसका भाई, बड़ा भाई पीता था, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबिलिटी बच गई, जेनेटिक्स। तो जीन्स की वजह से उसको ये चीज ट्रिगर हो गई। सिमिलरली विद मेंटल हेल्थ इश्यूज, अगर हमारे एंसेस्टर में ऐसा कोई व्यक्ति रहे हैं, ऐसे कोई पूर्वज रहे हैं जिनको लेट्स से कोई सी प्रकार का मूड डिसऑर्डर था, तो हमारे अंदर जरूरी नहीं है कि हमने लाइफ में बड़े ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस देखे ही हों, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा ही हो, या फिर हमने बहुत हम बड़े पॉवर्टी बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हो, हमने बड़े हताश रहे हो अपने जीवन में, ऐसा भी नहीं है ना। ऐसा है कि हमारे माता पिता हमसे प्यार नहीं करते, हमारे पास सपोर्ट सिस्टम भी काफी अच्छा है, तो भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, उस मूड डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके जीन्स में है और वो जीन्स स्ट्रेस के कारण है, किसी भी रीजन के कारण वो ट्रिगर हो गई तो होगा। तो इस प्रकार से बात होती है रुचिका। तो इसीलिए किसी भी एक व्यक्ति पर या जैसे पेरेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये तो एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से डेवलप होता है। उन पर पूरी तरीके से ब्लेम नहीं डाला जा रहा है, पेरेंट्स पर ब्लेम नहीं डाला जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ इस बारे में बात करी जा रही है कि कैसे एक बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है जिसकी जड़ें हमारे बचपन में घुसी हुई होती है, बचपन से वो जड़ें आ रही होती हैं। तो अगर हमें काम करना है अपने ऊपर, तो हमें अपने ऊपर वो अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, हमें वो रेजिलियंस रखना पड़ेगा। जबकि आज के समय के जो लोग, जो हम लोगों के जनरेशन के जो लोग हैं, वो लोग जो न्यू पेरेंट्स बन रहे हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम इस प्रकार के कोई मिस्टेक ना करें।
1: बिल्कुल। तो ये बातें जब हमारे सामने या हमने सुनी होती है और हमारी लाइफ में अक्सर जब ये होने लगती हैं, तब हमें रियलाइज हो जाता है कि हम में शायद ये चीज डेवलप हो रही है, तो उसमें हमें काम करने की जरूरत है। तो इसीलिए आप सभी तक ये बातें पहुंचा रहे हैं, ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर से आप सभी से मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: दोस्तों इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं और जितनी एनर्जी और जितने उत्साह के साथ हम आप सभी तक ये जानकारियां पहुंचाते हैं ना, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने आप को उतनी ही एनर्जी के साथ जागरूक करते होंगे और अपने जो आसपास के आपके करीबी लोग हैं उन तक भी आप ये सब जानकारियां पहुंचाते होंगे, क्योंकि हर कोई नहीं जान सकता है या नहीं उन तक ये जानकारी अगर पहुंच रही है तो अगर आप सुन रहे हैं तो आप उन तक ये जानकारी पहुंचाएं, ये आपका कर्तव्य है। क्योंकि किसी का भला करना ना, एक चेहरे पर मुस्कान, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो बस दिल को सुकून मिल जाता है कि नहीं कुछ तो अच्छा किया है। तो फिलहाल दोस्तों आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही खास आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात। तो आइए और भी जानते हैं कि और किस किस तरह के डिसऑर्डर हमारे में पनपते हैं या जागृत होते हैं। तो मैम हमने अवॉइडेड की बात की और डिपेंडेंट की बात की और अभी हम बात करने वाले हैं OCPD जी। तो आइए बढ़ते हैं बातचीत में आगे और जानते हैं मैम से कि आखिर ये कौन सी बला है, कौन सा डिसऑर्डर है OCPD। तो मैम प्लीज हमारे दोस्तों को इसके बारे में बताइए।
1: देखिए OCPD का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर
0: जी।
1: इसमें दो टर्मिनोलॉजीज हैं, ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव। अधिकांश लोगों ने OCD टर्म सुना होगा और कुछ लोग जानते भी होंगे कि OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, पर ये जो डिसऑर्डर है ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ ऑब्सेसिव और कंपल्सिवनेस के ट्रेट्स लेकर आता है। तो ये OCD नहीं है लेकिन ये OCPD है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए ऑब्सेसिवनेस का मतलब होता है किसी एक चीज में अगर घुस गए तो घुस गए और उससे बाहर आना या अपने अटेंशन को किसी दूसरे

0: बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करके चीजों को रखते हैं, बहुत साफ सफाई करके रखते हैं, और उनके इस प्रकार की चीजें उनके सिर्फ घरों में ही नहीं उनके काम में भी नजर आएगी।
1: हर कहीं, बिल्कुल,
0: उनका ऑफिस डेस्क हो या फिर उनके कोई फाइल्स हो, या फिर उनकी कोई प्रेजेंटेशन हो। यहाँ तक कि ऐसे में ना लोग, ये भी होता है कि वो अपने एंड गोल को अचीव ही नहीं कर पाते क्योंकि वो परफेक्शनिज्म में ही फंसे रह जाते हैं। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आता है बात कंपल्सिवनेस की। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप बोलेंगे कि कोई बात नहीं, छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, काम हो जाएगा, लेट्स से अगर बर्तन नहीं धुले हैं तो थोड़ी देर में धुल लेना, कोई बात नहीं
1: जी,
0: नहीं बर्तन तो अभी
1: धोने और अच्छे से धोने,
0: अच्छे से धोने। ये वो व्यक्ति होंगे जो, जिनके यहाँ पर अगर कोई मेड या हेल्पर काम करने आएंगी ना तो वो वहां पे खड़े होकर इंस्पेक्ट करेंगे कि सही से काम किया है कि नहीं, और वो उंगली से लगा लगा के देखेंगे, देखो यहाँ पे साबुन रह गया
1: जी।
0: और ये चीज इतनी ज्यादा होगी, इतनी एविडेंट होगी कि ये हर व्यक्ति को, उनके आसपास के जितने लोग है ना, उन सबको ये बात पता होगी कि देख दिस इज व्हाट ही और शी डज। तो यानी कि ये ऐसे ट्रेट्स होंगे, देखिए आम जीवन में भी हर व्यक्ति ऐसा करता ही है, एक ना एक दिन तो हर व्यक्ति अपने हेल्पर के काम को इंस्पेक्ट करेगा, बताएगा दैट यू नीड टू इंप्रूव,
1: लेकिन हर टाइम सर पे खड़े रहना, हाँ, वो
0: पर हर टाइम, एवरी सिंगल टाइम, और सिर्फ हेल्पर के साथ ही नहीं, वो कोई भी व्यक्ति होगा ना जो उनका काम करने लगेगा, वो हर उस व्यक्ति को टोकेंगे और बताएंगे देखो ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। वो उनके अंदर एक्सपेक्टेशन होगी सामने वाले लोगों से परफेक्ट काम को अटेन करने की, और वहीं से उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस में, उनके सोशल रिलेशंस में चैलेंजेस स्टार्ट होंगे।
1: बिल्कुल,
0: ये वो लोग होंगे जो लोग चप्पल अंदर कैसे आई घर के, बाहर की चप्पल बाहर ही रहनी थी, इसके ऊपर बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी और डेली होगी, ये नहीं कि वंस इन अ व्हाइल हुई, वो आम बात होती है, वो एक प्रकार का डिसिप्लिन सेट करने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर बात होगी कि डेली डेली ही कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है किसी ना किसी फैमिली मेंबर से, यहाँ तक कि बाहर वाले लोगों से भी हो सकता है। ऐसे लोगों का फियर यही रहता है कि हम जो एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं वो नहीं कर पाए, तो एक प्रकार की लो सेल्फ वर्थ रहती है जिसको अटेन करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए वो परफेक्शनिज्म की वजह से पीछे पड़े रहते हैं उसी काम के ऊपर। वही परफेक्शनिज्म आगे चल के रिफ्लेक्ट होती है इन द सेंस ऑफ ऑब्सेसिवनेस इन देम, और कंपल्सिविटी एज इन कि अब ये करना है तो करना ही है, ये ठीक से नहीं हुआ तो मैं इसको सब कुछ हटा के स्टार्टिंग से फिर से करूंगा। और ये इतना टायरसम हो जाता है ऐसे लोगों के लिए कि अधिकांश समय पर वो अपने एंड गोल तक पहुंच ही नहीं पाते। तो ये अपने आप में काफी चैलेंजिंग हो जाता है, ना ही सिर्फ अपने सोशल रिलेशंस के लिए बट ऑल्सो ऑक्यूपेशनल लाइफ के लिए भी, क्योंकि वो अपने एंड गोल को अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड देन अगेन दैट विल ओनली रिजल्ट इन लो सेल्फ वर्थ। तो ये एक लूप बन जाता है, और इस लूप से बाहर निकलने के लिए ही उनको फिर आगे ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ता है। That is the behavioral pattern, that is the personality.
1: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस बिहेवियर के साथ शायद हम खुद को भी हार्म, बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं, क्योंकि जब हमें चीजें मतलब जैसे चाहिए वैसे नहीं मिल पाती तो हम लोगों को भी बातें सुनाते हैं, मतलब हर टाइम
0: तक कि अपने आप को व्यक्ति इतना स्ट्रेस में चला जाता है वो रेस्ट नहीं करता,
1: रात को नींद
0: व्यक्ति को लगता है रेस्ट, मतलब वो कहते हैं ना कि आराम हराम है,
1: हराम।
0: ऐसे लोगों को ऐसा लगता है जब तक हमारा एंड गोल अचीव नहीं होगा तब तक हम रेस्ट नहीं कर
1: नहीं
0: सकते, बिकॉज दे हैव नाउ बिकम ऑब्सेस्ड अबाउट अटेनिंग दैट थिंग।
1: बिल्कुल, तो ये वही कि ओवरथिंकिंग का पार्ट भी होता
0: है। ओवरथिंकिंग तो एक बहुत छोटा ट्रेट होगा, ओवरथिंकिंग है इसका ट्रेट, डिस्ट्रेस भी एक ट्रेट रहेगा,
1: मतलब इसके अंडर जो है फिर हमारे साथ बहुत ज्यादा चीजें होने के चांसेस हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: जब हम
0: ऐसे में व्यक्ति ओवरथिंक भी करेगा, तनाव में भी रहेगा, अपने आप को रेस्ट नहीं देगा, उसके पर्सनल
1: रिलेशन
0: सब खराब होंगे, छोटी छोटी बातों पर फाइट्स हो रही होंगी, और उनके लिए वो छोटी चीजें इतनी इम्पोर्टेंट होंगी कि वो उसको छोड़ नहीं पाएंगे, तो ऐसे करके उनका लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगा।
1: तो वो कैसे इस चीज से बाहर निकल सकते हैं? ट्रीटमेंट
0: भी
1: बिल्कुल, तो लास्ट ऑप्शन दोस्तों देख लीजिए ट्रीटमेंट ही है, बाकी तो खैर हम बहुत ज्यादा समझदार हैं, यहाँ तक पहुंचे ही ना,
0: यहाँ तक की रुचिका हमें लगता है आने वाले समय में हम लोगों को कुछ थेरेपीज और कुछ डिफरेंट वेज ऑफ हैंडलिंग दीज थिंग्स भी डिस्कस करेंगे, तो हमारे जो ऑडियंस है उनको काफी मदद भी मिल सकती है।
1: बिल्कुल, ये मेन पार्ट है कि हम कैसे हैंडल कर सकते हैं इन चीजों को, ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो दोस्तों, आप सभी ने जाना कि किस तरह से हमारे में जो एक तरह से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फेस करते हैं, किस तरह से हम अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, अपने ही बिहेवियर से अपने दुश्मन। देखिए, लोगों को तो सुना है कि आजकल

0: इंसान इंसान का दुश्मन है लेकिन खुद खुद के दुश्मन है, ये यहाँ से पता चल रहा है। छोटी छोटी बातें जो कि अक्सर हम नजरअंदाज करते जाते हैं,
1: हमारा खुद का बिहेवियरल पैटर्न या हमारा खुद का माइंड या हमारी खुद की आदतें हमारे ही फेवर में काम नहीं कर रही होती।
0: बिल्कुल, और जब हमें ऐसा लगता है ना कि हम ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि हमें परफेक्शन के साथ, तो हमें तो ऐसा लग, और खुद को हमें ऐसा फील होता है कि नहीं हम बहुत सही हैं सोसाइटी की नजर से देखिए, क्योंकि हम हर चीज को परफेक्ट करते हैं पूरी परफेक्शन के साथ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और इसी के चलते फिर वो शायद अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं समझने के लिए और अपने बिहेवियर को डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों बहुत ही खास बातचीत आज के इस कार्यक्रम में आप सभी ने सुनी है, और मैम जाते जाते हमने ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है पूरा कंप्लीट किया है, तो इस पे आप थोड़ा सा अगर कुछ एक हमारे दोस्तों को इसमें कुछ बातें बताना चाहें शॉर्ट वे में।
1: देखिए हम ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि हर व्यक्ति को ना अपने भीतर झांकते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए कि हम कितनी इंटीग्रिटी के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सोच हमारा बिलीव सिस्टम और हमारे बिहेवियर आपस में कितने अलाइंड है। सिर्फ बिहेवियर ही नहीं, यहाँ तक कि हमारा जीवन हमारा लाइफस्टाइल कितना अलाइंड है, हमारे आसपास की जो रिलेशंस हैं उन रिलेशनशिप में हम जिनके साथ हम रिलेशन में हैं वो लोग कितने अलाइंड है, इस इंटीग्रिटी को चेक करते रहिए। ऑन द अदर हैंड अगर आपको कभी भी लगता है कि आपके अंदर आपके जीवन में आपके सोच में या व्यवहार में किसी प्रकार का पैटर्न बनता नजर आ रहा है तो उस पैटर्न को तोड़ दें। ये तो समझिए एक मूल मंत्र है जीवन का, अपने ऊपर काम करना है, ग्रोथ के टूवर्ड्स आगे बढ़ना है और सुखी जीवन जीना है, तो समझिए कि जहाँ पैटर्न दिखेगा वहां से हमें बाहर आने के लिए जी जान लगा दीजिए, पर वो पैटर्न को तोड़ दीजिए, स्पेशली तब जब हमारा पैटर्न हमारे लिए ही हार्मफुल हो या हमारे आसपास के लोगों के लिए हार्मफुल हो। तो हमें सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखना है, हमें अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना है। कई बार हमारे ही करे हुए काम की वजह से या हमारे व्यवहार की वजह से हम अपने आप को तो जस्टिफिकेशन दे देते हैं ना कि हाँ हमने ये महसूस किया इसलिए हमने ऐसा किया, हेंस आई एम नॉट सॉरी। पर आप ये देखिए कि उसका इम्पैक्ट सामने वाले के जीवन में क्या हो रहा है, और जब भी कोई भी पैटर्न नजर आए उसको ब्रेक करने का पूरा संभव प्रयास करें।
0: जी दोस्तों, तो इन्हीं बातों के साथ अब समय है आप सभी से अलविदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी को
0: कार्यक्रम संपन्न करने की। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी आप सभी के साथ एक नई जानकारी के साथ, नई बातचीत के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज आप सभी के अपनेपन की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने ये उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेल्लु और VP शिव कोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNS राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाश नाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।

0: जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
4: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कुछ लोग गलती करने के बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ना उन्हें पछतावा होता है, ना अपने कर्मों का डर, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन याद रखो पार्थ, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का प्रहार सबसे देर से पर सबसे गहरा होता है। समय शांत जरूर रहता है, पर हर कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है, और जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता।
2: ए यार, फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बक
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहा है आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, अब फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो, आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई।
5: तुम घर छोड़ के जा रही हो?
4: मेरी जॉब लग गई है।
5: अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है, तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना।
4: आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना है।
5: गुड गुड, जाओ पैकिंग करो।
4: हाँ, मैं पैकिंग कर लेती हूँ।

0: मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।
1: गिद्दे विच रेल मैं बनाई कादी वे, तेरे पीछे झूठी सौ मैं

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.9 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आज ही दोस्त रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

291 दशमलव मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो रंजन धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं पंजाबी गीतों के कार्यक्रम में। बिल्कुल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप?

0: यहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कुछ लोग गलती करने के बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ना उन्हें पछतावा होता है, ना अपने कर्मों का डर, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन याद रखो पार्थ, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का प्रहार सबसे देर से पर सबसे गहरा होता है। समय शांत जरूर रहता है, पर हर कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है, और जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बात
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो, आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई।
5: तुम घर छोड़ के जा रही हो?
4: मेरी जॉब लग गई है।
5: अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है, तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना।
4: आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना।
5: गुड गुड, जाओ पैकिंग करो।
4: मैं पैकिंग कर लेती हूँ।

91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये दोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर होई यो कार्यक्रम ले करी माटी दी महक तायशो तोहा सारे दा ही माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। कने जितने भी फेसबुक लाइव करने जुड़े न तिना दा भी शशि दी ओर ते प्यार भरा नमस्ते है, प्यार भरा स्वागत है। कने अगर तुहां नहीं जुड़े न तो जल्दी जल्दी जुड़िया। रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तुहां ऑडियो तो जेड़ा हंदी है सभी सुनी सकते, कने वीडियो भी जेड़ा लाइव है तुहां सारे ही जरूर दिखी सकते। तशो तो जिंदगी दा जेड़ा सफर है ना से हमेशा अहां जो कुछ ना कुछ सिखाई करी जांदा है। तांशो तो गल करिए अज कने दिन दी 17 जून 2026 दी। ए दिन बुधवार दा दिन है, बिल्कुल तुहां वास्ते भी खास है, कन्याहां वास्ते भी खास है। ता मिट्टी दा जेड़ा मटका होंदा, तुहां सारे वैसे भी गर्मियां दा मौसम है तो हाँ सोचते न कि जेड़ा मिट्टी दा मटका है तेदा पानी जेड़ा है से अहां जो पीने जो मिलियां तो थोड़ा जिहा अहां दा जेड़ा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य च जेड़ा ठंडक है से जरूर अहां जो मिलती है। पर मिट्टी दा जेड़ा मटका है तिसते अहां हमेशा ये पूछते न कि जेड़ा मिट्टी दे मटके च पानी जेड़ा है से हमेशा ठंडा रहिंदा है। तो से मिट्टी दा जेड़ा मटका है से मुस्कुराई करी बोलता है कि मेरा जेड़ा भूत है, भविष्य या वर्तमान है सब कुछ से मिट्टी ची है, तो फिर मैं किसा चीज़ा दा घमंड कर रहा है। क्योंकि गल तो एक ही है ना कि मिट्टी जेड़ा है, मिट्टी दा जेड़ा पानी है से हमेशा ठंडा रहिंदा, कि से अहां जो जरूर जेड़ा है से कुछ ना कुछ सिखाई करी जानता, पर अहां क्या जेड़ा सीखते न से अहां पर निर्भर करता है। क्योंकि मिट्टी दा मटका हाँ जो ये सिखांदा कि मेरा जेड़ा वर्तमान है, भूत है, भविष्य है से एक ही है, तो फिर मैं किसा चीज़ा दा घमंड करा। तो इंसान जेड़ा है से हमेशा अपना ही फायदा जेड़ा है से हर जगह दिखता है, या अपना जेड़ा सच कन्ने सच्चाई कन्ने चलना जेड़ा है से अच्छा नहीं समझता है। अजकने दौर की अगर अहां गल करिए तो कुथी ना कुथी अच्छाई दा जेड़ा पर्दा है ना से बिल्कुल ख़त्म है। तो हमेशा अच्छाई करने चला, अच्छा जेड़ा सोच विचार है से अपने अंदर रखा। क्योंकि जिंदगी दा जेड़ा सफर है ना से कालू दी या थमी आना है से तुहां जो भी नहीं पता है, मिंजो भी नहीं पता है, या आने वाला पल किस प्रकार जेड़ा है से अहां दा रहना है। तो इससे अच्छा कि अगर अहां जिंदगी दा जेड़ा सफर है से बेहतर तरीके ने जींदे ना तो कुथी ना कुथी अहां अपनी जिंदगी जो जरूर जेड़ा है से इंजॉय करी पाते न। तो तुह सारी भी माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकते, कन्ने अहां कन्ने गल बात जेड़ा है से जरूर करी सकते। तशो तो फेसबुक दे माध्यम कन्ने भी अहां जो फरमाइशा जेड़ा न से जरूर ओदियां न, कन्ने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकते, कन्ने अहां कन्ने गल बात जेड़ा है से जरूर करी सकते। तशो तो कार्यक्रम च जुड़ने वास्ते जेड़ा अहां दा नंबर है से जरूर तुहां तक पहुँचाना है। क्योंकि नंबर तुहां तक पहुँचाऊंगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टेक्स्ट मैसेज करी सकदे या व्हाट्सएप मैसेज करी सकदे। नंबर है 701-811-7091। तो इस नंबर पर तुहां कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। तो इसी कन्ने तुहां सारे जो ही पता है कि कार्यक्रम दा आगाज अगर प्यारे दे गीत कन्ने होवे तो कार्यक्रम दी जेड़ा शुरुआत च रौनक आला जेड़ा माहौल है से जरूर बनी आंदा है। कन्ने अहां दी कोशिश भी यही रहिंदी है कि थोड़ा जिहा गलबात कन्ने गीत संगीत होना भी जरूरी है। क्योंकि जालू गीत संगीत अहां दी गलबात कन्ने जुड़ी आंदा है तो कुथी ना कुथी जेड़ा कार्यक्रम दा सफर है से और भी सुहाना जेड़ा से लगता है। इसी सुहाने सफर जो अगे बढ़ाते न कने तुह जो ले कर चलते न प्यारे दे गीत दी और सुनते इसा प्यारी दिया फरमाइशा ते
फरमाइशा जो तुह तक पहुँचाते हैं ना, कने शुरुआत जड़ा है से अहाँ इस गीत कने करनी है। तुह सारे भी इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंदी, कने जितने भी श्रोता है ना तिना दी भी प्यारी प्यारी गूंज, क्योंकि से इतना ज़्यादा कार्यक्रम जो प्यार दें न, कने हमेशा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने जुड़े रहते हैं।

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इसी कन्ने तो हाँ सारे सुनिया एक गीत कन्ने, इसी गीत कन्ने हाँ कार्यक्रम दा जिड़ा आगाज है।

0: जरूर किता है। कने यहाँ जो फेसबुक के माध्यम कने फरमाइश जी है यहाँ तक पहुँची हुए चरण दास जी दी जरूर तिना तक कहाँ तिना दी फरमाइश जिड़े से पहुँचानी है। बस तुहा जिड़ा इंतज़ार है से करना है, क्योंकि इंतज़ार दी जिड़ा घड़ी है ना से तुहा वास्ते भी लंबी है। कने मेरे वास्ते तो बिल्कुल ख़त्म है और तुहा वास्ते भी बिल्कुल जिड़ा ख़त्म है। अहाँ दे अगले जिड़ा श्रोता न तिना कने कर दे न गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: जी ठीक ठाक। तो हाँ
0: जी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक है जी। क्या काम काज लग गया तो हाँ, क्या करा दे?
1: क्या काम लाना था, कपड़े धोते गई नोती के अंदर बिस्तर जो बैठियो।
0: जी ता आजकना जेड़ा मौसम है से कांगड़े दा कदिया बनया?
1: कांगड़े मौसम बस धूप लगी बड़ी बात तेज।
0: जी अच्छा धूप जेड़ा से बड़ी तेज लगी हो?
1: क्या करना, लगने तैयार हो गई है।
0: जी जी मौसम दा भी कोई भरोसा नहीं है ना जी।
1: हां जी
0: जी। और कांगड़े दी नोईता जी?
1: ओ तला सुतराड़ी है ना
0: जी। ता फिर ते जेड़ा विवाह ने से शुरू होई है ना जी, फंक्शन शुरू होई है ना?
1: जी
0: जी अस्त चुकी है कने फिर ते रौनक आला जेड़ा माहौल ऐसे फिर बनी है ना जी।
1: हाँ जी फिर बनी
0: है। जी जालू कोई भी फंक्शन होता है ता एक अलग ही एहसास जेड़े से जरूर होता है ना जी।
1: हाँ जी
0: जी। पर सह वाली रौनक हुण दिखने जो नहीं मिला दी ना जी। जी जी
1: ओ तो डीजे चाहिए।
0: अच्छा जी हां जी डीजे जेड़ा ना, अगर डीजे ना होंगे तो ब्याह नहीं होना ना जी, रौनक फिक्की रहनी थोड़ी। जी जी
1: जी
0: जी जी तो है नहीं है कोई फंक्शन? हां
1: जी नहीं है ऐसा कोई रियली।
0: जी अच्छा ली नहीं है कोई भी नहीं। जी तो स्वर्णा जी आज तो हां कुंडिया गीत सुनना पसंद करके फरमाइश तुह तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा।
1: धन्यवाद
0: जी। ये है तुहां सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहां कन्ने जुड़ सकदे कन्ने हां कन्ने गल बात जिड़े से जरूर करी सकदे। गला बातें जिड़ा न सभी करना जरूरी होनी है, क्योंकि खास दिन जड़े से अहाँ हमेशा ही सोचते हैं कि अजकना जड़ा दिन है से अहाँ वास्ते खास नहीं है। दिन तो अहाँ वास्ते हर दिन खास होंदा, चाहे अजकना दिन है चाहे कल्ले दा दिन है चाहे जड़ा दिन अहाँ दा चली है, सब यहाँ वास्ते खास है। पर अहाँ किस प्रकार अपने जड़ा दिन है उस जो खास बनाते हैं ना, कने फिर ते जड़ा शादी विवाह से शुरू हुई हो न पर सह वाली रौनक कुथी ना कुथी थोड़ी फीकी जड़ा से पई हो। बेशक सोशल मीडिया का जड़ा जमाना है से अच्छा है कि अहाँ कुथी ना कुथी सोशल मीडिया कन्ने जुड़े न, तिदे फायदे भी बड़े न पर नुकसान भी बड़े न। तो थोड़ा देर तुहां भी जरूर सोच विचार करा कि नुकसान क्या न, क्योंकि अहाँ हमेशा गलबात करते रहते न कि मोबाइल फ़ोन, हर कोई मोबाइल फ़ोन जितना बिजी है कि अहाँ अपने जो समय जड़े से नहीं दे पाते न, हर किसी कन्ने शिकायत करने पर लगे होते न। शिकायत करना ठीक है अगर अच्छे कमे वास्ते अहाँ शिकायत करते न सभी अच्छी गल है, पर जिंदगी का सफ़र है हमेशा हंसी खुशी कन्ने जड़े से सफ़र जो बिता कने अहाँ अगे बढ़ते न। कने अगली जड़ा फरमाइश है से चरण दास तक पहुँचाते न, तो वहाँ सारे भी इस प्यारी दिया फरमाइशा जो इंजॉय करा कने इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पंदी।

ये तो हाँ सारे का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इस कार्यक्रम का सफर तो हाँ तक रहा है 2 से 3 बजे तक। तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम के सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकते कन्ने तो हाँ सारे ये गीत ये फरमाइश इंजॉय की थी। तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम के सफर कन्ने जल्दी जल्दी जड़े से जुड़िया, क्योंकि जुड़ना तो बनता है ना। जिंदगी का जिहड़ा सफर है, अगर तुहां सारे चाहते ने कि उस जो खास बनाना है कने थोड़ा दे अपना मन लगाना है, तो मन तुहां जड़े से अपना रेडियो कन्ने जरूर जड़े से लगाई सकते। इसी कन्ने हाँ आगे बढ़ते हैं कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचाते हैं।

हार चिड़ै से नियुंती। कई बार तो हाँ दिख देना, अगर तो हाँ कोई भी काम कर देना या छोटे कमे ते तो हाँ शुरुआत कर देना, ताई तो हाँ अपनी जिंदगी दियाँ जिड़ा सीढ़ियाँ न तिना जो चढ़ी पा देना। सफलता जिड़ै से हाँ जो दिन रात जागी करी मिलती है, कई वर्ष जिड़ा न सहाँ जो मेहनत करने च लग जाते हैं, पर अहां दे जिड़ा इरादे न से हमेशा मजबूत होना जरूरी है न। छोटी शुरुआत अहां जो हमेशा कामयाबी दी ओर लेकर ही जाती है। जिंदगी दा जिड़ा नाम है अगे बढ़ना। अगर अहां जिंदगी दा एक भी कदम थमाई दे न तो कुथी ना कुथी अहां अपनी जिंदगी जो भी थमाई दे न। अगे बड़ी करी अहां सपने जिड़ा न तिना जो साकार कर दे न, कने अगर अहां बहाने ढूंढ दे न तो अहां अपने जिड़ा हौसले न तिना जो कुथी ना कुथी खोई दे न। हौसले जिड़ा न से हमेशा मजबूत रखा। कोई भी काम तुहां कर दे न, चाहे तुहांदा पेंटिंग करने दा शौक है, चाहे तुहां जो सिलाई च शौक है, कोई भी काम है, अगर तुहां पूरी लगन मेहनत ने तिस कम में जो कर देना तो जरूर सफलता दी ओर चल देना। छोटी दे शुरुआत तुहां जो एक बड़ी कामयाबी दी ओर लेकर जाती है, पर से यहाँ पर निर्भर करते हैं कि यहाँ क्या सोच विचार अपने अंदर रख देना, कने क्या सोची करी यहाँ तिस कम में जो कर देना। तो जिंदगी का ये सफर है बड़ा सुहाना है। कई बार अपने का जिड़ा साथ है सभी होना हाँ वास्ते कितना ज़्यादा जरूरी है। अगर अपने का जिड़ा साथ है से हाँ जो मिली आंदा है तो हाँ हर मुश्किल जो आसान जिड़ा है से करी देन। तो हमेशा अपनी जिंदगी च हंसते रहा, खुश रहा, क्योंकि खुश रहना भी जरूरी है। थोड़ा देर अगे बढ़ते न कने अगली जिड़ा फरमाइश है से अहाँ पहुँचानी है। हूँ तुह सोचा दे उन्हें न कि अगली फरमाइश अहाँ कुथू पहुँचानी है, थोड़ा दिया सबर तो करा। जल्दी जल्दी तो हाँ भी पहले इस कार्यक्रम के सफर करने जुड़िया। ये फरमाइश अहाँ जो आई है कांगड़े ते, कने तिना दा ना है स्वर्णा जी। कांगड़े दी सैर कुन कुन करना चाहता, जड़ा जड़ा करना चाहता तो से जरूर इस गाने दे माध्यम कन्ने ही घूमी फिरी सकता, क्योंकि थोड़ा दिया मन ही चेंज करना है ना, जिंदगी का ही इंजॉय लेना है ना। तो जरूर तो सारी इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, कने अहां तुहां तक पहुँचा देन ये प्यारी दे फरमाइश, प्यारा दिया भजन।

0: आमूला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तुहा सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो शशि कने इसी कने तुहा सारे सुनिया प्यारा दिया भजन प्यारी दे फरमाइश फिर त्यहाँ वापिस जेड़ा न से अपनी गलबात ऊपर आई हो न क्योंकि गलबात करना भी यहाँ वास्ते जरूरी है। अजकना जेड़ा दिन है से यहाँ वास्ते कयो खास है तिस खास दिन का बनाने का उद्देश्य क्या है क्योंकि हर दिन की अपनी अपनी खासियत जड़े से जरूर होंगी है। विश्व मरुस्थलीकरण जड़ा दिवस है या सूखा रोकथाम दिवस जड़े से आज हाँ बना देन यानी कि जागरूक करना लोगों जो जागरूक करना कि जड़ा उपजाऊ जमीन है अगर अहाँ तिहा जो बंजर बनाई देन तो कुछ ना कुछ अहाँ अपनी जड़ा जमीन है वह जो बंजर बनाते चलो तो अपनी जड़ा उपजाऊ जमीन है तो इसके कितने ज़्यादा फायदे न से तो हाँ सारे जो ही पता है पर अजकने दौर की अहाँ गल करिए तो कुछ ना कुछ ये जड़ा खेती बाड़ी है ये बिल्कुल कम जड़े से हुई हो। हर कोई यही चाहता कि सिर्फ अहाँ घर बैठे यहाँ ही सब कुछ मिलियाँ बस अहाँ काम जड़े से ना करन पर काम करते रहन तो कुछ ना कुछ अहाँ अहाँ का जिहड़ा स्वास्थ्य है सभी ठीक रहिंदा कने अहाँ भी फिट कने फाइन रहिंदे तशो तो अगले जिहड़ा कॉलर हैं तिना कने करदे न गल बात कने तो हाँ सारे इस वक्त जुड़े न रेडियो गुंजन धर्मशाला कने। हेलो
1: हेलो नमस्कार मैम जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न
1: जी। हम नरवाना ते बोला दे जी।
0: जी नरवाना ते बोला दे जी क्या हाल चाल है जी नरवाना वाले दे।
1: जी हाल चाल तो बड़े खराब है ना पंप वाले तेल नहीं दे रहे
0: जी
1: कने खेती बाड़ियां बस बाल खत्म हो गई उनका ना बस बैठे ट्रैक्टर आने आला
0: जी ये तो तुहां बिल्कुल सही बोलिया
1: तो टोपी भी लगाया जिम्मेदारी तो करिए कुछ तो लोग नहीं करना चाहते कने कुछ सरकार नहीं करना दे रही
0: जी जी
1: जी
0: परेशानी तो है क्योंकि हर चीज मशीना दे सहारे पर होएगी हो ना जी।
1: देखो गवर्नमेंट ने भी बैन कर दिया कि पंपा पर तेल पोस्टर लगाई थे बड़े बड़े की बोतल भरने मिला हूँ 4 लीटर टंकी है इसीलिए की जंग एरिया उसी बिकवर रोड ट्रैक्टर लेंगे लेंगे तो हाँ क्या रेट पे जाना कितना महंगा होना है
0: जी बड़ा ज्यादा
1: जलू अखे वखे जमीन बिकी आंदियां या पॉपुलेशन बढ़ी आंदी कने लोका मकान पाए लिए हुन तां पहले हां डंगर आयो नहरां छड़दे हुन तां नहर डंगर चाह ही सकदे
0: जी जी। चलो सभी ठीक है पर अगर अहां एकजुटता एक दूजे अंदर रखदे ना तो कुथी ना कुथी से कायम रहंदी है ना जी।
1: जी सह तो है पर
0: जी
1: हुन तुहां देखा भई हाँ लोगों को खुद जागरूक होना पड़ना अगर हाँ गवर्नमेंट पर डिपेंड रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हाँ कामयाब होंगे
0: जी जी क्योंकि यहाँ दा ता काम ही जमीना दा जुड़े है ना जी।
1: बिल्कुल हाँ जी देखो छोटे जिम्मेदार हैं अपना साले राशन कड़ी लेंदे
0: जी
1: मंदिर लेके हाँ साले राशन कड़ा तो जेड़ा डिजिटल जमीन है तुसी ऐसा डीपू ते या सब बाजार खरीदी सकदा ना
0: जी जी यहाँ जो टेंशन नहीं होंदी यहाँ बिल्कुल फ्री होंदे ना जी कि नहीं
1: यहाँ सारे अगर खेत के छड़ी अगर बाजार है सारे इनके तो फिर बाजार तरह से आंदा कोते
0: जी जी कने हर किसी दी इतनी पहुंच नहीं होंदी ना जी अपनी अपना पहुंच दे हिसाब ने कई खेती बाड़ी करने भी गुजारा कर दे ना जी खुद वास्ते भी निकाली लेंदे कने जेड़ा बेची बुची करी अपना जेड़ा गुजारा है सभी जरूर कर
1: बिल्कुल ले। बिल्कुल जी हां अपनी फसल तैयार कर तो थोड़ा मता कर लंदे बेच लंदे हां अगर फसल कर दे ता हां डंगरे पाल लंदे
0: जी
1: आना जी पूरे तो चैनल बन जा
0: जी
1: आना जी पर पूरी चेन टूटना लई भी हो जिस सब बेरे ना मतलब सिस्टम एक तो बैल खत्म हुई हो
0: जी जी
1: कने दुआ जे किसके लिए बैल हन भी तो सर कितने करी हो से एक दो बंदे खेती कर दे पूरे पिंडी जे करी सकदे
0: जी कुथी कुथी दिखने जो मिलला दिया ये चीज जाना जी
1: बड़े बड़े गठिए बैल मतलब मैं नरवाने की दिखा था लगभग बैल है ही नहीं
0: जी जरा भी नहीं होने
1: चल ट्रैक्टर का पंप बंद कितने आऊं ट्रैक्टर भी बंद हो
0: जी तो
1: सीधी ऐसा बच्चा जरा अपने गड्डी याद आ
0: जी जी
1: पहले बोलते जी ट्रैक्टर आले जी हम छी जा गुआरी नहीं होता बोलते पंप ले तेल लिया कने हाँ कड़ी दे
0: जी अच्छा अच्छा
1: और तेल ला दिंदे नहीं भाई तेल तो गवर्नमेंट ने बंद करी पिया
0: जी जी बड़ी ज्यादा मुश्किल है ना जी
1: हाँ जी बड़ी मुश्किल नहीं है जी ये बिल्कुल खात्मा है दुनिया का ना कल तो होंगे ना 6 बजे प्रोग्राम च सचिन जी ने टॉपिक चलाया कि हिमाचल से भी बड़े मर्डर हो दे
0: जी जी बड़े
1: हूँ क्राइम हो दा
0: जी
1: भुख लगनी है मोबाइल रिचार्ज करना ही है कोई ना दिमाग मूवमेंट करना ही है
0: जी जी सही है ना
1: खाली दिमाग
0: जी खाली दिमाग शैतान का घर तो कोई ना कोई विचार चले रहता ना जी
1: हर कुछ होटल नौकरी नहीं मिल सकती सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी उतनी वैकेंसियां नहीं है ना जगह नहीं है कुछ रखने
0: जी जी
1: थोड़ा मतलब फार्मी होंगी था लोग चलो बच्चे भी छुट जाते घर का अपना कमाई लेंगे थोड़ा जहा हम भी काम करते हैं
0: जी
1: एक रोटिया का साधन बन जाता है गांगा दिखा तो हां जी क्राइम बदलना है घटना नहीं है
0: जी जी बदना है ज्यादा बदना है क्योंकि जिस हिसाब ने अगर हां उन्हें दी गल करिए

0: तो जिंदगी सोनी है, तो ज़रूर जिंदगी तो सोनी है, पर हाँ किस प्रकार अपनी जिंदगी जो सोना जिड़े से बना देन से यहाँ पर निर्भर करता है। इसी करने हाँ आज जिड़ा गल बात करा देन से करा देन, तो हाँ ज़रूर अगर मेरी गल बात जो सुना देंगे, मरुस्थलीकरण कने जिड़ा सूखा रोकथाम है इसके बारे च आज हाँ जिड़ा खास दिन बना देन। इसकी शुरुआत जिड़े से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जिड़े से दिसंबर 1994 च जिड़े से घोषणा हुई थी, कने पहला आयोजन जिड़े से 17 जून 1995 च बनाया था। तो इस बनाने का मकसद क्या वे, अनाज का जिड़ा संकट है, उपजाऊ जिड़ा जमीन है से बिल्कुल ख़त्म होने दी कगार पर है। अगर हाँ फसल नहीं करते न तो जिड़ा हाँ दी जमीन है से बंजर बनी आती है, तो इसते जिड़ा कई खतरे जिड़ा से हाँ जो दिखने जो मिलते न। अगले जिड़ा श्रोता न तिना कन्ने करते न गल बात। हेलो,
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: बढ़िया ही बढ़िया
0: जी। क्या काम कार लगे है जी तुहां, क्या करा दे?
1: काम कार क्या का, पालमपुर से आएगा ना, रोंखरे जाना जी।
0: जी अच्छा, रोंखरे हो, रोंखर फंक्शन होना ना जी, जगराता तिथु होना ना जी।
1: हां जी, हुन सोई के उठे चाय पानी पीता दादी वाले चाय बना
0: जी। जी
1: चाह पीते के ना हुन
0: जी, ता समय जी
1: तैयारी करे
0: जी। चलो तैयारी करना भी जरूरी है, रौनक लगाना भी जरूरी है ना जी।
1: वाई तरीक दिख रही है ये काम
0: जी। जी है, वैसे भी हुन अस्त भी चुकी है, ता हुन ता फंक्शन ही फंक्शन है ना जी।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी। ता आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके जी, समय जिड़े से हल बड़ा थोड़ा दिया है।
1: कोई लंगा गाना पूरा
0: जी, ता आज ता मुझे लगा था मुश्किल ही है।
1: दो बोली सुनाई नहीं हूँ, मेरी माँ से ये तस्वीर रहे प्यार में तेरे नाल पाया
0: जी। जरूर जी, दो बोली तो हाँ तक पहुँचा दें जी, चुनने वास्ते
1: बड़ा बड़ा गाना मैं दे रहती है
0: जी। जी जरूर जी, जरूर जी जी। वैसे तो हाँ खुद भी गाई सकते अगर तो हाँ गाना चाहता जी, थोड़ा दिया बाकी श्रोता तक गाई करी पहुंचाई दिया तो हाँ अपनी आवाज च, अपनी आवाज च जेड़े से तो हाँ बाकी श्रोता भी जितने भी सुना दिन दिना तक तो पहुंचाई सकते ना जी।
1: हाँ जी
0: जी जी,
1: हो मेरी माँ।

0: नण लाया, वे प्यार तेरी नण पाया, मैं दिल तेरी नण लाया, मेरी माता दिए तस्वीरे, मैं प्यार तेरी नण पाया, मैं प्यार तेरी नण लाया, मैं दिल तेरी नण लाया।
1: जी बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा, बाकी श्रोता भी सुना दे उन्हें जी जरूर जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी, कने फरमाइश जेड़ा दो बोल तुहां सुनाए बड़े बढ़िया जी। इन्हें जिंदगी का जेड़ा सफर है तुझ जो हमेशा इंजॉय करते रहे जी। जी धन्यवाद जी। तशो तो अहां भी अगे बढ़ते हैं, कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचाते हैं।

दर्शकों तुम सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपने रेडियो दो शशि केंद्र। इस कार्यक्रम का जो सफर है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक। इसी कन्ने तुह सारे अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति कन्ने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्म।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
4: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कुछ लोग गलती करने के बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ना उन्हें पछतावा होता है, ना अपने कर्मों का डर, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन याद रखो पार्थ, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का प्रहार सबसे देर से पर सबसे गहरा होता है। समय शांत जरूर रहता है, पर हर कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है, और जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बात
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई।
5: तुम घर छोड़ के जा रही हो?
4: मेरी जॉब लग गई है।
5: अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है, तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना।
4: आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना है।
5: गुड गुड, जाओ पैकिंग करो।
4: हाँ, मैं पैकिंग कर लेती हूँ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
4: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कुछ लोग गलती करने के बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ना उन्हें पछतावा होता है, ना अपने कर्मों का डर, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन याद रखो पार्थ, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का प्रहार सबसे देर से पर सबसे गहरा होता है। समय शांत जरूर रहता है, पर हर कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है, और जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता।
2: ए यार, फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो, आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई।
5: तुम घर छोड़ के जा रही हो?
4: मेरी जॉब लग गई है।
5: अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है, तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना।
4: आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना है।
5: गुड गुड, जाओ पैकिंग करो।
4: हाँ, मैं पैकिंग कर लेती हूँ।

नमस्कार श्रोतों, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और हूँ सचिन कपूर हाजिर बुझको कार्यक्रम लेकर इंदी अपनी गप्पा बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन हाँ सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा कैसे तो है सब, उम्मीद कर रहे तो सब खरे बुने खुश बुने तंदुरुस्त बुने और अपने घर के श्रोतों सो राजी खुशी बुनन और ज़रूर है खुश रहना भी है ना, हमेशा वाल देना है खुश रहना कि सो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल तो सब श्रोता सो के जुड़े सकते हैं जनाब, आज कने छुट्टी के दे रहे हैं तुंदे ये भी तो है ज़रूर दसे सकते हैं और आज महाराणा प्रताप जयंती है ठेरी तू सभी शुभकामनाएँ भी बुन और सभी पहले तो तू पता है धर्मशाला रे मौसम रे बारे की सो जानकारी तुसु तक पहुँचन दे श्रोतों और सोगे सोगे मौसम तो सोगे सोगे तो सब अपनी अपना पसंदीदा गीत की ऐसा ज़रूर होने सकते हैं 7081889 पर नंबर आक मौके फिर आऊँ शेयर करना हाँ तुस होगे 7081889 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं अपने क्षेत्र रे जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं छोदो फिलहाल धर्मशाला रा मौसम अगर तुस दसी छोदो तो इस समय की है सो 19 डिग्री सेल्सियस रे आसपास की है सो मौसम हा और नमी री गल करिए 83% किया सो धर्मशाला मा नमी बन रही है छोदो और मौसम बिल्कुल सही है धूप के ऐसा लग रहा है इवन कि दिन अंदर के ऐसा मौसम 27 डिग्री सेल्सियस तक के ऐसा चली के छूरत हुआ हमें दसो कि इस समय के ऐसा मौसम भी 21 डिग्री सेल्सियस रे आसपास हाश हो तो है ना। तो ये जी आगाज़ कर लेते हैं कार्यक्रम रहा और तो सब श्रोता जुड़ सकते हैं बहुत सारी जानकारी तो सो गया सो शेयर करनी ने साझा करनी ने मूल दिन इस गीता तो बाद आगाज़ कर दें कार्यक्रम रहे इस गीत

शोध एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम में इस वक्त हिंदी अपनी गप्पा गया ना सो बिल्कुल लाइव चल रही है जनाब तुम सभी रहे रेडियो सेट में और फेसबुक माध्यम तो भी है बिल्कुल लाइव की सो तुस होगी जुड़ी चुक रहे तो कैसे हैं तो है सब उम्मीद करना खरे भूने इन श्रोताओं तक चलिए जानकारी रहा पिटारा के सो खोल दे इन श्रोताओं और इन जी हम भी श्रोता सो गए कनेक्ट बोले तो तुस हो गया है जरूर रूबरू करवाले है ना जी तो श्रोतागण कनेक्ट भूने वास्ते कॉल कर ही सकते हैं इस नंबर में जो 7089 पर नंबर आख मौके फिर हम शेयर करना साझा करना 7089 पर तो है सब श्रोता कॉल कर ही सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी असोगी साझा कर ही सकते हैं यह गलारा खास ख्याल रहे कि जानकारी किया सो साझा करने लायक जरूर बहुत जानकारी की सो रेडियो मंज दसने लायक के जरूर बहुत सो तुम तो चलिए मानसून अकी हफ्ते में क्या ये अनुमान लाऊ कर दें कि अकी हफ्ते अंदर अंदर की असो मानसून हिमाचल प्रदेश में अपने दस्तक दे सकता है श्रोताओं जी बिल्कुल प्रदेश में 19 जून तक किया सो दसो कर दें कि प्रदेश में हिमाचल प्रदेश है अलग अलग हिस्से मंच किया सो 19 जून जो बरखा भी भूने तूफान भी चलना और ऑरेंज अलर्ट किया सो जा रही है जी बिल्कुल श्रोताओं पूरी जानकारी तो उस तो क्या है पहुँचंदे हिन हिमाचल प्रदेश में इन दिना मौसम र मिजाज की सो बार बार बदलू कर दे जें कि ऐसा भेरू कर दे सो तो वज वे कई क्षेत्र में कि सो बरखा थों बाद करखन करखा मणु जो भीषण गर्मी थों किया सो राहत जरूर मोड़े हा सो तो दूजी और अगर एरन है तो ओलावृष्टि की सो बागवान और किसाना भी बागवान और किसान जो थोड़े करे चिंतित जरूर करवाओ कर दे है ना चिंता रविशे की आसो जरूर हा चिंता जरूर बढ़ू कर दे मौसम विभाग की आसो प्रदेश में 19 जून तक के आसो बिजली लुड़ना बरखा भी चेतावनी दित रही हा ओलावृष्टि लुड़ने रिकी है श्रोताओं सो चेतावनी दित रही हा जबकि 18 जून जो पांच इलाके में के ओलावृष्टि भी संभावना बल्लू कर दें कि पांच इलाके में के ओलावृष्टि भी संभावना के सो जताऊ कर दें श्रोतों है ना जी और अब क्या बंदा क्या ना बंदा 20 और 21 जून जो फिर मौसम की असो शांत रहने वाला है और इस प्रकार का मौसम की असो रहने वाला है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला रे अकॉर्डिंग अगर हम गल करूँ श्रोता हूँ वैज्ञानिक संदीप शर्मा वे अनुसार अगर है गल करूँ तो सो बल्लू कर दिन लगातार के असो नज़र रखो कर दिन सामान्य तौर पर मानसून 22 जून रे आस पास के असो शिमला पहुँचेगा ना जबकि 25 जून तक पूरे प्रदेश जो कवर किया सो कर ही सकता है मानसून है ना मौजूदा परिस्थिति जो हेरद की असो अगले हफ्ते रे भीतर मानसून के श्रोताओं सो दस्तक दे सकता है तब बरसाला किया सो तुसु सब भी दसना चाहता जो वैज्ञानिक बल्लू कर दिन इस समय सो ये बल्लू कर दिन जनाब की 25 तक के असो बरसाले दस्तक दे देने हैं तुंदे घर तक और लगातार बरखा रेनकोट नहीं तो रेनकोट ले लिया छतरू नहीं तो छतरू ले लिया है ना पूरी इस प्रकार की संभावना बन रही है कि अगले हफ्ते तक के सो मानसून दस्तक दे ही सकता है तुंदे दरवाजे में शो तुम ता कार्यक्रम मंच तो है सब श्रोता जुड़ सकते हैं 7089 पर इन अक श्रोता जुड़ू कर देती है लेकिन डिसकनेक्ट हुए न थोड़ा करे कनेक्ट भुने जो कि श्रोताओं दसना चाहता कि समय जरूर लगता है तो यह जानकारी जनाब कि मानसून अगले हफ्ते तक दे सकता है दस्तक और 19 जून जो अलर्ट है 18 जून जो भी की कि ऐसो कुछ इलाके में बरखा बच सकते हैं तो चलिए जानकारी रहा पिटारा के शो तो सो ये खोल दे रहना तुंदे वीडियो सेट में और गीत संगीत रहा पिटारा भी ये खोल दे रहना सो तुंदे वीडियो सेट में और लाइव रे माध्यम तो इन जितने भी शो था ऐसा वीडियो जो हेर ले बहरहाल बने रहे तो सब हार जे सचिन कपूर सोगी और हैया लेके चल दे तू सभी जो शो तो इस गीत तारी किनारी हंस दे रहे मुस्कुरा दे रहे और खुश रहे तंदुरुस्त रहे अक्सर बलदन बार बार बलदन छोतो रे अक्सर इंदा बलना बार बार इंदा बलना ता संभव है कजो के छोतो
इति थों तो सेहत बन दिया इति थों तो इंसान की सो अपनी जिंदगी जो थोड़ा और बेहतरीन बनाए सकता, थोड़ा और किया सो बढ़िया बनाए सकता है ना। चलिए लेके चल दे तू सब भी जो इस गीत तारी के नारी बने रहा। आरजे सचिन कपूर सो की गूंज अपने पन के।

श्रोत एफ एम एंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला। तो ऐसा भी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा जनाब बिल्कुल लाइव चल रही तो ऐसा बस श्रोता जी जुड़ कर दे थी जुड़ सकते हैं 7088879 पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आख मौके फिर आऊँ तू होगे शेयर करना और जनाब 7088879 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत सुन सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी और वो की साझा कर सकते हैं। यह गल विशेष ध्यान रहे कि जानकारी किया सो रेडियो मंज दसने लायक जरूर भो जानकारी किया सो रेडियो मंज जितने भी श्रोता हूँ कर दें तो त्यारे हुनने लायक जरूर भो है ना जी। चलिए तो अपना पसंदीदा गीत भी तो बेशुमार सुनी सकते हैं श्रोताओं। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ऐसो धर्मशाला शहर रे कचरे अरे अवैज्ञानिक निपटान जो गंभीरता था उन लियो हुआ और कांगड़ा वे डिप्टी कमिश्नर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रे अधिकारी और धर्मशाला नगर निगम जो कि ऐसो नोटिस जारी कर जवाब किया सो मंगू हा श्रोतों। कोर्ट के ऐसो सभी प्रतिवादियों जो अगली सुनवाई तक या तथ्यों पहले अपनी अपनी रिपोर्ट जमा कराने व निर्देश किया सो देते हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह और न्यायाधीश विपिन नेगी है ना ये सुनवाई वे दौरान किया सो पाना की धर्मशाला शहर रे कचरे जा कचरे रे निपटान वैज्ञानिक तरीके थो ना बचू कर दहा। कोटे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धर्मशाला वे सचिव जो कचरा निपटाना स्थल और कांगड़ा रे पास सड़क रे हिस्से व निरीक्षण करने और सुनवाई भी अगली तारीख तक या उत्तों पहले इन मुद्दों पर के असो रिपोर्ट जमा कराने रे निर्देश देते हैं श्रोतों। मामले भी सुनवाई किया श्रोतों सो 2 जुलाई जो किया सो सूचीबुद्ध बुझगाने हाँ ते कुछ जानकारी जो है तो सो शेयर करो कर दे हिंद श्रोतों एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप से बिल्कुल लाइव चल रही है ना जी। तो आइए कार्यक्रम जो थोड़ा करी और हगो बढ़न दे हिंद लाइव कार्यक्रम में चले रहे ना तुंदे वीडियो सेट में श्रोताओं फरमाइशरा दौर किया सो बिल्कुल शुरू हा तो अपनी फरमाइशा भी किया सो दे सकते हैं श्रोताओं अपना पसंदीदा गीत किया सो भी जरूर होने सकते हैं। तो चलिए चल दें और अरुण भट्ट री आवाज़ में किया श्रोतों सो हूँ दिन ये गीत बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सो के गूंज अपने बन रहे

श्रोता एफ एम ब्यान्ड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम लेकर आऊँ सचिन कपूर हाजिर बुजुर्गो तुंदे सभी रे रेडियो सेट में अग मुके फिरे तंत्राल थों बाद तुंदा फिरे आऊँ स्वागत करनू हार्दिक अभिनंदन करनू है जितने भी श्रोता आसूगी बन रहे हैं जितने भी श्रोता आसूगी इस समय जुट रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन रही ऐसी गूंज होगी तो बने रहना हाँ श्रोता और इतने ही प्यारे प्यारे गीत और जानकारी के ना सो तुसु तकरा सु साझा करू करनी जिन करू कर देते है ना। तो चलिए शतों कार्यक्रम जो आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी सो गीतु सो रूबरू करवा दें शतों हिमाचल हिमाचल प्रदेश है कि ऐसो आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगाने वे आदेश जारी करी तेन शतों जी बिल्कुल कोर्ट ये स्पष्ट करो हा जो कोर्ट आती ये स्पष्ट करो हा कि सरकारी विभाग और सार्वजनिक उपक्रमा में कोई भी नियुक्ति भर्ती नियुक्त भर्ती एवं नियमरे विपरीत न होने हाँ। पिछली सुनवाई में कोर्टे दसो श्रोता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग में पहले मनु 100 आउटसोर्स आधार पर नियुक्त होने हैं जो बाद में रोगी कल्याण समिति में तिन्या तड़ी काम करना तस डिपार्टमेंट में ना रोगी कल्याण समिति में क्या जिन्या काम कर रहा हुआ इस तरह अधिकारी द्वारा अज्ञात उद्देश्य रे वास्ते आउटसोर्स भर्ती रे रूप में गुप्त मार्ग खोले गाना हाशो तो मामले में अगली सुनवाई किया सो 7 जुलाई जो किया सो बोने या फिलहाल हिमाचल आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगाने वे आदेश किया सो जारी करी देते हैं इन तो सब बन रहे इस समय आरजे सचिन कपूर सो गए और कार्यक्रम बिल्कुल लाइव होने कर दें जनाब अपने अपने रेडियो सेट में 91.2 मेगाहर्ट्ज पर तेन दक्षोतन जो कॉल करो कर दें कनेक्ट जरूर कर ले तो है भी कनेक्ट हो सकते हैं 7088879 आग पर श्रोताओं ता इस प्रकार हो गया कि ऐसा जानकारी रा पिटारा खोल देगा ना हर श्रोताओं जानकारी के अनुसार इस प्रकार हो गया सो तुस हो गए साझा कर दे रहना हाँ ता श्रोतों कर खन कर खाए चिट्टे रा आऊँ तुस हर रोज़ अपडेट दिंदा सोचा हर रोज़ कि आसो कोई ना कोई ज़रूर पकड़े करता हाँ पंजाब तो हिमाचल पुजू करता चिट्टा है कभी चंडीगढ़ तो हिमाचल पुजू करता हाँ चिट्टा कभी कड़ी थो कड़ी कभी कड़ी थो है ना। तो मेन सप्लायर कितने मेन सप्लायर ने हिता है बिना जानते लेकिन जो जो हिंद तीन पुलिस के सो पकड़ू करती है शो तो और शिमला पुलिस से चिट्टा तस्करी के खिलाफ किया सो जो अभियान चलो रहा है शो तो ठेरे तहत तक बड़ी सफलता की सो हासिल करी है तो सभी दसना चाहता है शो तो कि ये अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क पर किया सो पुलिस है हिमाचल री पुलिस है शिमला री पुलिस है किया सो सिकंजा कसो हा और पुलिस शिमला पुलिस भी कार्रवाई में 309 ग्राम चिट्टा किया सो बरामद हुआ हा शो और 84,900 रुपये नकद किया सो बरामद हुआ इन्या मेन सप्लायर तो इतना पे है किया सो पुलिस से पकड़ो हा ते रोजाना तुसु अपडेट बुंदे आ पूरे हिमाचल रे कि कहने कड़ी थों कौन सप्लायर पकड़ो कहने कड़ी थों कौन सप्लायर किया सो पुलिस भी सिकंजे में किया सो चले हा इस प्रकार ही तुसु गे किया सो असु जानकारी साझा करनी हिन श्रोता और अपने श्रोतागण जो के असु ये अपडेट करते रहना प्रत्येक जानकारी रे थ्रू बहरहाल लेके चलते तू सब भी जो इस प्यारे दे गीत तारी किनारी बनी रही है तो ये सब जुड़ी रही है तो ये सब जे सचिन कपूर सोगी और कार्यक्रम बिल्कुल लाइव होने कर दे नींदी अपनी गपा तो इस कार्यक्रम में जनाब तो है बने भी सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत तो है होने भी सकते हैं तो बनने वास्ते जुड़ने वास्ते जनाब तुसो कॉल जरूर करना पैने हाँ 7088879 पर नंबर आग मुके फिर 7088879 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं।

श्रोतो एफ एम एंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और आऊँ तो सोगी तुम तो अपना आर जे वेडियो जो कि सचिन कपूर हाँ बहुत बहुत स्वागत है मौके फिर तुम दस सभी रहा। चलिए कार्यक्रम जो हाँ बड़ा श्रोता हूँ सुनील राणा जी रा गीत होना हा आशा जी आ रहा ना हा और काचा चढ़िया पहाड़ा जो एक ये जरूर होने ले तो सो लेकिन आइए कुछ एक और मेन फोकस कर लेंदे नहीं या जानकारी पर शो तो हिमाचल में आउटसोर्स भर्ती पर के सो कोटे रोक लाइते हैं शो तो है ना देश भर में टेलीग्राम पर 22 जून तक जो प्रतिबंध किया सो लग सकता है अब सिर्फ डॉक्टरी पर्ची पर ही किया सो मिलना है कफ और सिर्फ शो तो है ना और असिस्टेंट प्रोफेसर वे 273 पद वास्ते किया सो तो है आवेदन कर सकते हैं। ये कुछ एक खास जानकारी है जो अहतोगी शेयर करी श्रोतों और तो सब बन रहे समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगी श्रोतों और कफ सिर्फ वाली किया सो तुसो जानकारी दीन दे रहा है कफ कफ सिर्फ अब बिना डॉक्टर रही पर्ची वैनिया खरीदी सकते हैं तो है केंद्र सरकार है किया सो ड्रग्स नियम में बदलाव करूँगा ठेरे तहत सिर्फ और अब उस लिस्ट था किया सो हटाई देता है शो तो कस लिस्ट तो हटाई देता जिति मैं दवाई सीधी दुकान तो है खरीदी सकते थी है ना सरकार राय बलना हा कि इस तो सिर्फ आधारित दवाई पर निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण मजबूत बुंदा हा सोगी शो तो सिर्फ निर्माण निर्माता जो खरीदने वाले हैं जो बेचने वाले हैं है ना यहाँ भी किया शो तो सुकर खन करखा मतलब जो नशा इस समय बढ़ू करता है शो तो इति पर सख्त नियम रा पालन किया सो करू कर दी इस समय सरकार और कर्फ और कफ और सिर पर किया सो बगैर डॉक्टरी पर्ची रहे तुसो ना मोलनी है। बहरहाल कार्यक्रम जो आगो बढ़ेंदे हैं और लेकिन चलते तुसो आशा आशा जी रही है फरमाइश शो तो यह फरमाइश किनारी सुनील राणा दी जीवे द्वारा एक गोरा गीत है शो तो बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने बन रहे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे

शोध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम इन दी अपनी गप्पा के न सो चल रही है इन शोतों तब वक्त।

ਚੁੱਕ ਤੂੰ ਸਭੀ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਲੈਣੇ ਰਹਾ ਔਰ ਤੂੰ ਸਭੀ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਆ ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਨਾ ਬੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਆ सो अलग बुंदा हा शो तो है ना जीवन में बहुत से परिवर्तन इंदे बहुत सी चेंजेस इंदे लाइफ में है ना हर पड़ाव में कुछ ना कुछ चेंज किया सो जरूर बुंदा हर लाइफ रे मोड़े अंदर हर लाइफ रे पन्ने अंदर किया सो कुछ ना कुछ अलग है सो जो हेरने जो और होने जो किया सो जरूर मिलता है तो शो तो हाँ तुसु सभी सो की सिर्फ ये बोलना चाहता हा कि तो सब खुश रहे तंदुरुस्त रहे माता पिता री सेवा के सो जरूर करा और बगैर माता पिता री सेवा के सो कुछ भी नहीं सो तो सो सियाने इन्ना सो मोटे इन्ना करा घर अंदर तो सो सब कुछ ने मतलब सो तुम तुसु आशीर्वाद भी दिच्छू कर दें तुंदे भले रे बारे भी सोचू कर दें और सब कुछ करू कर दें सो तो है ना तिया था लावा तुसु कोई सच्चा प्यार ना कर सकता सो सच्चा प्यार कर दें तुसु ये मन नहीं करी चल रहा है ना और जो यूथ अंदर आजकल सुसाइड ज़्यादा बड़ो कर दा चाहे सो पढ़ाई जो लेकर ही बोआ चाहे सो लव अफेयर जो लेकर ही बोआ पर इति अंदर कुछ भी ना लिखुरा रखुरा बेश हो तो और ना ही लिखुरा तुसु वाकई में अगर सच्चा प्यार आ तो अपने माता पिता हो की करा है ना जिन्या तुसु जम्मे संसार दसुरा हा तिन्या होगी कि असो सच्चा प्यार करा शो तो बाकी मैं दसो ना कि लाइफ रहा हर एक पन्ना सेम ना कुछ बदलाव जरूर बुंदे रहिंदा लेकिन स्टिल लव योर पेरेंट्स ताऊ सचिन कपूर ले लेनु तुसु थो इजाजत गंद गंदे बोलना चाहनु साफ सफाई रा ध्यान रखा पर्यावरण रा ध्यान रखा नमस्ते धर्मशाला।

0: ऑडियो जंगल।
1: नमस्कार, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं, तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। हिमाचल में आउटसोर्स भर्तियों पर कोर्ट की रोक। किशाऊ बांध परियोजना से हिमाचल को प्रतिवर्ष मिलेगी 600 करोड़ रुपए की निशुल्क बिजली। देशभर में टेलीग्राम पर 22 जून तक रहेगा प्रतिबंध। अब सिर्फ डॉक्टर की पर्ची पर ही मिलेगी कफ सिरप। असिस्टेंट प्रोफेसरों को 373 पदों के लिए करें आवेदन। अब समाचार विस्तार से।

हिमाचल ने आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में कोई भी नियुक्ति भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत नहीं होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि स्वास्थ्य विभाग में पहले लोगों को आउटसोर्स आधार पर नियुक्त किया जाता था और बाद में रोगी कल्याण समिति में समाहित कर लिया जाता है। इस तरह अधिकारियों द्वारा अज्ञात उद्देश्यों के लिए आउटसोर्स भर्तियों के रूप में गुप्त मार्ग खोला गया है। मामले पर अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। हिमाचल में वो उत्तराखंड की सीमा पर प्रस्तावित किशाऊ बांध परियोजना को लेकर 8 वर्ष पुराना वित्तीय विवाद सुलझ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को नई दिल्ली में हुई बैठक में यमुना की सहायक नदी टॉस पर बनने वाली 422 मेगावाट की परियोजना को लेकर गतिरोध समाप्त हो गया। 8 साल से लंबित परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दे दी है। अब अंतिम स्वीकृति के लिए इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने हिमाचल को परियोजना से हर वर्ष 100 करोड़ यूनिट निशुल्क बिजली देने की शर्त मान ली है। केंद्र सरकार ने 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी के मद्देनजर मंगलवार को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक रोक लगा दी। सरकार ने ये कदम टेलीग्राम के जरिए पिछले कुछ दिनों से परीक्षा से जुड़ा झूठ फैलाने और कई किए जा रहे दुष्प्रचार से निपटने के लिए उठाया है। इसके अलावा सरकार ने टेलीग्राम को अपने मैसेज एडिट फीचर को परीक्षा के बाद भी 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है। यानी इस प्रतिबंध के बाद देश में टेलीग्राम पर पहले से ही भेजे गए मैसेज 30 जून तक एडिट नहीं हो पाएंगे। हाई कोर्ट ने उपायुक्त कांगड़ा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी और नगर निगम धर्मशाला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को अगली सुनवाई तक या उससे पहले रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 27 जुलाई को होगी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन सिंह नेगी के खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि धर्मशाला शहर में कचरे का निपटान वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया जा रहा है और ठोस कचरा धर्मशाला में एचआरटीसी वर्कशॉप के ठीक नीचे सुधेड़ के निकट हाईवे पर फेंका जा रहा है। उपायुक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी व नगर निगम को नोटिस कांगड़ा के पास स्टेट हाईवे की सड़क पर नहीं, सरकार का ध्यान स्टेट हाईवे पर मांगी। रिपोर्ट कोर्ट ने पाया कि कांगड़ा के पास स्टेट हाईवे जहां सुरंगें बनाई हैं की हालत बहुत खराब है। एक बार जब सुरंगें चालू हो जाएंगी तो ये सड़क बेकार हो जाएगी, लेकिन राज्य सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। कफ सिरप अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं खरीदे जा सकेंगे। केंद्र सरकार ने ड्रग्स नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत सिरप को अब उस लिस्ट से हटा दिया गया है जिसमें दवाएं सीधे दुकान से खरीदी जा सकती हैं। सरकार का कहना है कि इससे सिरप आधारित दवाओं पर निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण मजबूत होगा। साथ ही सिरप निर्माता और विक्रेता को लाइसेंसिंग और क्वालिटी कंट्रोल से जुड़े सख्त नियमों का पालन करना ही होगा। राज्य लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के 373 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2026 को रात 11:59 बजे तक जो है वो निर्धारित की गई है। इस समय सीमा के बाद आवेदन लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। 18 से 45 वर्ष की आयु वाले भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। प्रत्येक चयनित प्रशिक्षु को 35,000 रुपए प्रतिमाह का मेहनताना दिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने अंग्रेजी विषय के शिक्षकों की नियुक्तियों से संबंधित आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। उच्च न्यायालय में एक अंतरिम आदेश के बाद निदेशालय ने यह फैसला लिया। मंगलवार को निदेशालय की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय ने 15 जून को गोविंद ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य में एक अंतरिम आदेश पारित किया था। शिक्षा निदेशक ने कहा कि अब उच्च न्यायालय द्वारा कोई और निर्देश दिए जाने या सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून के अनुसार आदेश दिए जाने तक इन नियुक्तियों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
उत्तर भारत की सबसे कठिन एवं धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा इस वर्ष 10 से 23 जुलाई तक होगी। यात्रा के सफल संचालन और व्यवस्थाओं को लेकर मंगलवार को निर्मंड समिति सभागार में श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट की बैठक हुई। बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्रीखंड यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही सीमित संख्या में ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी। पोर्टल को शीघ्र ही आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में CBSE से संबद्ध सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अब कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय की पढ़ाई करवाई जाएगी। शिक्षा सचिव की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। जिन स्कूलों में जो संकाय पहले नहीं थे उन्हें अब शुरू कर दिया गया है। इसके तहत चंबा जिले के किहार में वाणिज्य और मेडिकल की कक्षाएं लगेंगी। हमीरपुर जिले में 12 में मेडिकल, वर्सर और बतरान में वाणिज्य और मेडिकल संकाय उपलब्ध होंगे। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 30 जून तक नई स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन अनिवार्य कर दिया गया है। समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश ने ये निर्देश जारी किए हैं। नई SMC दिशा निर्देश 2026 के तहत पूर्व में गठित सभी समितियां स्वतः भंग हो जाएंगी। अब प्रत्येक स्कूल परिसर में केवल एक ही SMC कार्य करेगी। नई व्यवस्था के तहत SMC सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया है और समिति की मासिक बैठकें अनिवार्य रहेंगी। 2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। ये परीक्षाएं 3 जुलाई से शुरू होंगी। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओं, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और हाजिर हो गए हैं हम स्टूडियो में लेकर ढेर सारी जानकारियां और प्यारे प्यारे गीत। तो श्रोताओं, पूरे दो घंटे का सफर आपके साथ रहेगा। इस दो घंटे के सफर में करेंगे हम ढेर सारी बातें और जानकारियां आपके साथ साझा और सुनवाएंगे आपको प्यारे प्यारे गीत। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले करवा देते हैं आप सभी का मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम वापिस आते हैं तो कुछ आज की जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। 17 जून के दिन विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर स्वच्छता कर्मचारियों के श्रम को सम्मान देने हेतु वैश्विक कचरा कर्मी दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही इस तिथि का भारतीय राजनीति से लेकर इतिहास तक का विशेष महत्व भी है। और विश्व मरुस्थलीय और सूखा दिवस की बात करें तो भूमि के क्षरण को रोकने और बंजर होती धरती के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित दिवस है। वैश्विक कचरा कर्मी दिवस दुनिया भर के सफाई कर्मियों के योगदान को सराहने के लिए ये दिन समर्पित है। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में और भी जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में फिर से रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप जुड़े रहिए रेडियो मंजन धर्मशाला के साथ।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी के रेडियो सेट पर चल रहा है गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में आज है आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूँ इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो आइए आज के दिन यानी 17 जून के थोड़े से इतिहास की ओर रुख करते हैं। और 1631 में आज ही के दिन मुमताज महल का निधन हुआ था, जिसकी याद में मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसके साथ साथ 1858 में ग्वालियर के युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। और साथ ही साथ 1944 में आज ही के दिन आइसलैंड को डेनमार्क से स्वतंत्रता मिली थी, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, ढेर सारी जानकारियाँ आज का दिन लिए हुए है। उन्हें अगर हम 2002 की बात करें तो कराची में अमेरिकन वाणिज्य दूतावास को दोबारा खोला गया था। 1904 में मंगल पर पृथ्वी के चट्टानों से मिलते जुलते पत्थर मिले थे। और 2004 में बगदाद में सेना की भर्ती केंद्र पर विस्फोट में 44 लोगों की मृत्यु भी हुई थी। दिन कोई भी हो, ढेर सारी जानकारियां लिए हुए होता है। फिलहाल इस समय हम आज के दिन की बात कर रहे हैं तो 17 जून 2008 में देश के विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस का बेंगलुरु में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। 2008 में रूस ने अपने विनाशकारी रासायनिक हथियारों का जखीरा 2012 तक नष्ट करने के दिशा में कदम उठाया था। इसके साथ साथ 2008 में ये भी हुआ था कि कनाडा सरकार ने तमिल वर्ल्ड मूवमेंट संगठन को आतंकवादी समूहों की सूची में डाला था। श्रोताओं, जानकारियाँ अभी बहुत सारी आपके साथ साझा करनी है। अभी वक्त भी हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन वक्त गीत सुनवाने का इस समय हो चुका है, तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन
1: और यूट्यूब के ऐप पर बेल आइकन को क्लिक कीजिए।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से वापस आते हैं और कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत साई नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा और आवास तथा शहरी मामलों मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्रारंभिक 12 वर्षों की अवधि पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के सामान्य 12% मुफ्त बिजली रॉयल्टी के अतिरिक्त निःशुल्क बिजली रॉयल्टी की हिस्सेदारी बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से 180 मेगावाट की बैरासियूल जल विद्युत परियोजना के संचालन में 44 वर्ष पूर्ण होने के परिणाम स्वरूप इस परियोजना में निःशुल्क बिजली की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50% करने का आग्रह किया है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ भी और भी कार्यक्रम में हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए।

श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद वापिस फिर से कार्यक्रम में आते हैं और बात आज की करते हैं। आज है 17 जून और आज के दिन को हम मना रहे हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के रूप में। और साथ ही साथ इसके अलावा आज के दिन महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई, जैसे हमने पहले बात की, का बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। और मेवाड़ के महान राजपूत शासक महाराणा प्रताप, जो अपनी वीरता, त्याग और स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे, उनकी जयंती हम आज मना रहे हैं। और लक्ष्मीबाई को तो कौन नहीं जानता होगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की नायिका, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और जिनका बलिदान दिवस भी आज ही के दिन यानी 17 जून को हम जो है मना रहे हैं। तो जो तो हर दिन ढेर सारी जानकारियों वाला होता है, आज का दिन भी ढेर सारी जानकारियां लिए हुए हैं। तो जानकारियां हमें बहुत सारी आपके साथ साझा करनी है। ज़्यादा बातचीत हमारी होती रहे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी इंतज़ार रहता है कि कब हमारे जो दोस्त हैं वो हमें गीत सुनवाए। और गीत के बिन थोड़ा सा कार्यक्रम अधूरा लगता है, और गीत संगीत कार्यक्रम में हो तो हमारा कार्यक्रम भी पूरा हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने कार्यक्रम को और मनोरंजक बनाते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचाते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला। गीत से पहले श्रोताओं, याद आ गया कि हमारा समय अभी है अंतराल का। अंतराल के ठीक बाद हम आपको लिए चलेंगे गीत संगीत की ओर।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9888

0: 8206997।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर

श्रोतो, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम वापस आते हैं और आगे की जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। श्रोतो, दिन तो बहुत अच्छा हमारा निकल गया। हर दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से होती है और होते होते शाम हो जाती है, और जब शाम होती है तो हम वही अपना घर आकर आराम करते हैं, समय बिताते हैं, अपनों के साथ बैठते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, थकावट उतारते हैं और फिर हमें आ जाती है नींद। नींद के बाद वही रूटीन फिर से शुरू हो जाती है, सुबह होती है और जग जाते हैं हम सभी अपनी अपनी दिनचर्या पर जाने के लिए। तो श्रोतो, अगर कुछ बात आपके साथ साझा करें कि सुबह होते ही बहुत सारे काम होते हैं, हमें थोड़ा अपना ध्यान रखना होता है, घरेलू कामकाज बहुत सारे होते हैं, अपनों का ख्याल रखना होता है, तो उठते ही सबसे पहले बात की जाए तो 7 बजे से पहले, यूं कहे तो वैसे तो जल्दी उठना बहुत अच्छा होता है हमारी आंखों के लिए, हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन बहुत सारे लोग 7 बजे या 7 बजे के बाद भी उठते हैं। अपने उठने से पहले हमें कुछ एक काम ज़रूर करने चाहिए जिससे हमारी सेहत जो है बहुत अच्छी रहती है और हमारे लिए जो है फ़ायदा रहता है। सबसे पहले तो हमें भी भगवान को याद करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि रात भर हमें अच्छी मीठी नींद दी, रात भर हम सोए और सवेरा हो चुका है, हम जग गए हैं, तंदुरुस्त अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उसके बाद श्रोता, हमें दूसरा काम ये करना चाहिए कि एक गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए जिससे हमारा शरीर और दिमाग दोनों ही एक्टिव रहते हैं, तरोताज़ा हम महसूस करते हैं, हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है और पानी से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे भी दिन भर हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए जिससे स्किन भी थोड़ी सी ग्लो करती है। आजकल के समय में हर कोई चाहता है कि खिला खिला सा रहे। इसके बाद थोड़ी सी अगली बात की जाए तो 5 से 10 मिनट हम योग या ध्यान या प्राणायाम कर सकते हैं जिससे मन को शांति मिलती है और हमारा फोकस जो है बढ़ता है। और इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारा हमें ध्यान रखना पड़ता है, अपना ज़िंदगी में आए हैं तो छोटे छोटे काम करते रहना चाहिए। आधा या 1 घंटा हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर सर्दियों की बात करें तो सभी दुबके रहते हैं बिस्तर में, लेकिन आजकल के दिन की बात करें बहुत अच्छे दिन है और सुबह जल्दी 4 बजे भी उठा जा सकता है। और अगर हमारी रूटीन नैशोदा हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, जल्दी उठे, अपना एक्सरसाइज करें। आधा या 1 घंटा हम एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे पूरा दिन भर हम एक्टिव रहते हैं, एनर्जी से भरपूर रहते हैं और छोटे मोटे रोग भी हमारे पास नहीं आते हैं। अगर कोई छोटा मोटा रोग है तो वो भी कई बार हर दिन रूटीन में एक्सरसाइज करने से दूर भाग जाता है। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हर दिन हमें करने चाहिए। तो नया दिन जैसे ही शुरू होता है तो कुछ टारगेट लेकर भी हम चल सकते हैं और इससे भी हमारा फ़ायदा होता है, ये भी हमारे लिए अच्छा रहता है। और सुबह सुबह बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है, जैसे ही नींद से जगते हैं सबसे पहले अपना देखते हैं फ़ोन, व्हाट्सएप पे मैसेज होते हैं, धड़ाधड़ सुबह मैसेज आ रहे होते हैं गुड मॉर्निंग के, और भी बहुत कुछ चैटिंग चली होती है, कईयों की बातचीत चली होती है, कुछ वैसे खुद से अपने मैसेज कर रहे होंगे, कोई कुछ काम में व्यस्त होते हैं। तो श्रोता, थोड़ा सा हम सुबह सुबह फ़ोन से दूर रह सकते हैं और इससे हमारी शांति भी भंग नहीं होती है और दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत जो है उसमें अच्छा पड़े, अच्छा सुने, हमारे लिए अच्छा रहता है। सकारात्मक सोच हमारी ज़िंदगी को बदल देती है। सुबह सुबह हम भजन भी सुन सकते हैं, मन को शांति मिलती है और हम भी अपने रेडियो से सुबह सुबह अपने श्रोताओं तक भजन पहुंचाते हैं ताकि थोड़ा सा मन को शांति मिले। और जीवन में भक्ति की बातें श्रोताओं की जाए तो भक्ति भी बहुत ज़रूरी होती है। हमें खुद में भी थोड़ा सा ऊपर वाले को याद करना चाहिए, अच्छे जीवन हमें उसने दिया है, अच्छे जीवन के लिए धन्यवाद करना चाहिए, अच्छे खाने पीने, अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छे कामकाज के लिए हमेशा ऊपर वाले को धन्यवाद करते रहना चाहिए। तो श्रोताओं, इन्हीं बातों के साथ फिर से हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

श्रोतो, इस तरह से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम वापस आते हैं, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां अभी हमें आपके साथ साझा करनी है। उन जानकारियों में हम थोड़ा सा आज मोबाइल के बारे में बात करेंगे कि मोबाइल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। यूं कह सकते हैं कि एक छोटा सा यंत्र हम सभी की जेब में होता है, हम सभी के पर्स में होता है, और उसके बिना हमारा आजकल के समय में गुजारा भी नहीं है। हर कोई बाहर जाता है तो और कोई चीज़ भूल जाए, लेकिन अपना फ़ोन साथ में ले जाना नहीं भूलते हैं। और साथ ही साथ फ़ोन से बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारा ज्ञान हमारा बढ़ता है, और कुछ से भी चीज़ के बारे में कुछ जानना हो तो फटाफट से हम एक बटन दबाते हैं और बहुत सारी जानकारियां वहां से हम प्राप्त कर लेते हैं। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद ज़्यादातर हम लोग फ़ोन के साथ समय बिताते हैं। आजकल यूं कहें तो रिश्तों को हम महत्व कम देते हैं, फ़ोन को महत्व ज़्यादा देते हैं। तो श्रोताओ, जहाँ फ़ोन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वहाँ कुछ नुकसानदायक भी है। सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया ने हमें जोड़ने का काम तो किया है, और लेकिन इसे बहुत साइड इफ़ेक्ट भी हुए हैं, हमारी सेहत पर भी साइड इफ़ेक्ट पड़ा है, और साथ ही साथ रिश्ते भी बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। पहले के समय में जब भी हम कामकाज से फ्री होते थे तो अपने रिश्तों नातों को, अपने भाई बहनों, अपने फैमिली मेम्बर्स को जो है समय देते थे, लेकिन आज वो समय जो है सारा मोबाइल ने ले लिया है। उठते बैठते खाते पीते हम मोबाइल चलाते हैं। कई बार क्या होता है, खाना भी चल रहा हो तभी हम फ़ोन के साथ लगे होते हैं। फ़ोन पे किसी का मैसेज तो नहीं आया, कोई काम हमारा रह गया है, माइंड में 100 बातें चलती रहती हैं और हम जो लगे रहते हैं फ़ोन के साथ। लंबे समय तक मोबाइल का इस्तेमाल करने से ना केवल हमारी आंखें थकती हैं बल्कि आंखों में ड्राइनेस भी आ जाती है। और बहुत सारे, जैसे हमने पहले भी बात की, जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी है। कहते हैं कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किया जाए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक ही रहती है। तो श्रोताओ, जितना हो सके उतना फ़ोन का इस्तेमाल करें और अपने रिश्तों को भी अहमियत दें, क्योंकि रिश्ते जीवन में बहुत अनमोल होते हैं, और इन्हें संभाल कर रखें, इन्हें प्यार से रखें, अपनों को समय दें। और फिलहाल हम थोड़ा सा रुकते हैं कार्यक्रम में और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: श्रोतो, इसी गीत के साथ है कार्यक्रम में समय हो गया है समाचारों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करे। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। उन्होंने अफ्रीका, लातिन अमेरिका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजना का भी प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। श्री मोदी ने सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनिश्चित करने पर केंद्रित कार्य सत्र में भी भाग लिया। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इसी बीच श्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर भी सभी की नजरें हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्ल्यू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडपम के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एंटी सेटबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय, आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एंटी सेटबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में नीदरलैंड्स ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत ने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। इधर लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 84 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोताओं, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपने दोस्त आरजी सुमन के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे स्क्रीन पर समय बिताने से बहुत सारी बीमारियां जो हैं शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, तो स्क्रीन से जुड़ी ये आदत हमारी सेहत पर तो बुरा प्रभाव डालती ही है। साथ ही साथ आजकल के समय में हर व्यक्ति जो है कम से कम 3 घंटे तक लगातार तो फ़ोन चलाता ही है, और पूरे दिन की बात करें तो करीब 3 घंटे 15 मिनट मोबाइल पर बिताए जाते हैं। लगभग 58 बार हम लोग फ़ोन भी चेक करते हैं, कहीं भी बैठे हो, हॉस्पिटल में बैठे हो, कहीं बस का इंतज़ार कर रहे हो, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हो, एयरपोर्ट पर बैठे हो, तो हर कोई अपने अपने फ़ोन में व्यस्त होता है। किसी के पास समय नहीं होता है कि किसी के साथ बातचीत कर ले। मोबाइल लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल अब रीढ़ की हड्डी में भी तेज़ी से असर डाल रहा है, रीढ़ की हड्डी को भी नुकसान पहुंचा रहा है और इससे भी जो है तकलीफ़ होती है। आप सभी ने देखा होगा कि आजकल छोटे बच्चों को अगर खाना भी खिलाना हो, दूध पिलाना हो, तो जो उनकी माताएँ हैं या यूँ कह सकते हैं कि अभिभावक है, वो भी बच्चों के हाथों में फ़ोन थमा देते हैं ताकि बच्चा जो है फ़ोन चलाता रहे या उस पर पोइम्स देखता रहे, कार्टून देखता रहे और जो है दूध को पूरी तरह से ख़त्म कर दे, पी ले। अगर ऐसा ना हो तो बच्चे कहीं ना कहीं रोते हैं, और छोटे बच्चे बड़ों से ज़्यादा तेज़ होते हैं, फटाफट से पोइम्स निकाल लेते हैं और देखने लग जाते हैं अपने मन पसंदीदा कार्टून या फिर पोइम्स। तो ज़्यादा फ़ोन के इस्तेमाल से हमारी गर्दन पर असर पड़ता है, और जिसे हम 45 डिग्री तक नीचे करके स्क्रीन देखते हैं और गर्दन में दर्द हो जाती है। ज़्यादा समय तक बैठे रहने से मोटापा शरीर में प्रवेश करता है, इसके साथ साथ और भी कई सारी बीमारियां जो है हमारे शरीर में प्रवेश करती है। ये सर्वाइकल स्पाइन पर दबाव डालती है जिससे कि टेकने का खतरा तेज़ी से बढ़ जाता है। धीरे धीरे चेस्ट और गर्दन की मांसपेशियाँ जो है टाइट होने लगती हैं, और देखते ही देखते जो है हम थोड़ा सा दवाइयों की भी आदि हो जाते हैं और जाना पड़ता है भाई डॉक्टर के पास, क्योंकि दर्द और तकलीफ हमारी इतनी बढ़ जाती है कि डॉक्टर के पास जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहता है। दर्द इतनी ज़्यादा होती है और कई बार तो ऐसा होता है कि असहनीय हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा समय हम नीचे देखते हैं। कई श्रोता हमारे ऐसे हैं जिनको फ़ोन की वजह से आँखों की दर्द या फिर चश्मा लगना, बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हो गई हैं। और कई बार क्या होता है कि कहीं बाहर जाना हो, चश्मा भूल जाए, तब तो देखना भी मुश्किल हो जाता है। तो श्रोता, तो वही बात आ गई, जहाँ कुछ चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, वहीं कुछ चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक भी होती हैं। माना ये चीज़ बहुत काम की है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। कहीं भी दूर बैठे हो तो बात हम अपनों से कर लेते हैं, अपनों को देख लेते हैं। अब शायद ऐसा हो गया है कि दूर बैठे भी अपने हमें अपने दिल के बिल्कुल करीब लगते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और कुछ भी चीज़ इवन खाना बनाने की कुछ रेसिपी निकालनी हो वो भी निकाल सकते हैं, किसी भी ज़रूरत का ज्ञान हमें वहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, एक छोटा सा यंत्र होता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें अपने बीच रखता है, जिससे हमें फ़ायदा ही रहता है। तो श्रोताओं, फ़ायदा उतना ही लेना है जितनी की ज़रूरत हो, कहीं ऐसा ना हो कि फ़ायदा लेते लेते हमारे खुद के लिए नुकसान हो जाए। तो श्रोताओं, इन्हीं बातों के साथ थोड़ा सा कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन, कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद फिर से कार्यक्रम में वापिस आते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी जानकारियां हमें आप तक पहुंचानी हैं। उन्हीं जानकारियों में हम बात आज मोबाइल की कर रहे हैं, तो मोबाइल धीरे धीरे हमारी चेस्ट और गर्दन मांसपेशियों को में भी दर्द करती है, और इसके साथ साथ पीठ कमज़ोर होती है, गर्दन और कंधों में लगातार अकड़न तथा भारीपन महसूस होता है, और साथ ही साथ जो है श्रोता पोस्चर ख़राब होने की शुरुआत अक्सर छोटे छोटे बदलाव के कारण होती है, जिसे हम रोज़मर्रा की थकान समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये संकेत शरीर के संतुलन बिगड़ने का साफ इशारा होते हैं। लगातार गर्दन पीठ में दर्द, गहरी सांस लेने से दिक्कत, बहुत जल्दी थकान, पीठ आगे की ओर झुकाकर रोज़मर्रा के काम में मुश्किलें पैदा होती है, चलते हुए गर्दन आगे झुक जाती है, ये सारे मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल का ही कारण है। तो श्रोताओं, मोबाइल के दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ इसके लाभ है वहाँ नुकसान भी हैं। तो और भी जानकारियाँ हम आपके साथ साझा करेंगे, फिलहाल कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुँचा देंगे।

श्रोता, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आज का गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो आइए कुछ स्थानीय जानकारियां हम आपके साथ साझा करते हैं। कांगड़ा जिला के धर्मगिरी पठियार में महाराणा प्रताप की 427वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाराणा प्रताप केवल एक निर्भीक योद्धा ही नहीं बल्कि दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता भी थे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों को कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा है कि ये युद्ध आज भी साहस, बलिदान तथा स्वतंत्रता एवं सम्मान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक हुआ है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को महाराणा प्रताप के आदर्शों का अनुसरण करने का आह्वान करते हुए कहा है कि वे त्याग, अनुशासन और राष्ट्र सेवा के मूल्यों को पहचान कर राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक सद्भाव को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अनुशासन, ग्रामीण विकास, गुणवत्तापूर्व शिक्षा, कौशल विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के प्रतिबद्ध है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में लेते हैं एक अंतराल। अंतराल के ठीक बाद हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर

श्रोताओ, हम तो आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं होते हैं, आपसे प्यार करते हैं और तभी तो चले आते हैं हर दिन मिलने और ढेर सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने। श्रोता, नाराज होना भी नहीं चाहिए, जिंदगी में आए हैं तो कुछ पल ही हमारे पास हैं, खुलकर जी लें, हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात करते हुए जी लेना चाहिए। अगर कोई नाराज है तो उसे मना लीजिए और जाने कब इस मेले से हम बिछड़ जाएं, तो इसलिए समय रहते अपने रिश्तों को भी संभाल लें। और इसी के साथ, इन्हीं बात और जानकारियों के साथ फिर से हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे मोबाइल के बारे में। स्क्रीन टाइम हम सभी को थोड़ा सा अपना कम कर देना चाहिए, बच्चों और बड़ों दोनों का स्क्रीन टाइम सीमित करना चाहिए, ऑफलाइन टाइम बढ़ाएं और आउटडोर एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा देना चाहिए। अगर गर्दन तथा पीठ का दर्द लगातार बढ़ रहा है, हाथों में झुनझुनाहट या सूनापन आ रहा है, सुन्न हो रहे हैं हमारे हाथ या सर दर्द बढ़ता जा रहा है, तो रोज़मर्रा के काम प्रभावित होने लगे हैं, तो बिल्कुल देर किए बिना अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें ताकि आपकी जो परेशानी है, आपकी जो दिक्कत है, उससे आपको छुटकारा मिल सके। लंबे समय तक श्रोता, मोबाइल का इस्तेमाल करने से हमारी आंखें ख़राब होती हैं और भी बहुत सारी, जैसे हमने पहले बातें की हैं, जानकारियां आपके साथ साझा की हैं कि बहुत सारे रोग दुख तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनसे छुटकारा मिले, इसके लिए आपको थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनानी होगी। इस्तेमाल ज़रूर करें लेकिन एक सीमित रहकर मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूर करें। मोबाइल

से एक बहुत अच्छी और बहुत काम की चीज़ है। खाना पीने की बात करें तो खाना पीना भी लिमिट का ही इस्तेमाल किया जाए तो हमारे लिए फ़ायदा रहता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाया जाए या चीनी खाई जाए तो चीनी भी हमारे लिए नुकसानदायक होती है। घी तेल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो कहीं ना कहीं हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो हुई ना बात श्रोताओं की, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक ही रहती है। तो फिलहाल ज़्यादा बातें भी हमारी हो रही हों तो कहीं ना कहीं हमें खुद को ऐसा लगता है हमारे श्रोता जो हैं परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि उन्हें भी इंतज़ार रहता है कि जानकारियां तो साथ साथ में वो प्राप्त कर रहे हैं और हम लगातार जानकारियां उनके साथ साझा करते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में गीत संगीत तो ज़रूर बनता है। थोड़ा सा गीत हो तो ज़िंदगी और रोमांटिक हो जाती है। ज़िंदगी में कामकाज के साथ साथ संगीत भी ज़रूरी होता है। तो आइए थोड़ा सा हम अपनी जानकारियों पर लगाते हैं विराम और अपने श्रोता तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। तो सुधरे

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से वापिस आते हैं और अपनी जानकारियां आपके साथ थोड़ी सी और साझा कर लेते हैं। स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल श्रोताओं, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित होता है। हमने अभी आपके साथ बातें की हैं, बहुत सारी तकलीफें, आँखों की समस्या, गर्दन और पीठ की समस्या, मोटापा और सुस्ती, और साथ ही साथ हमारी नींद में भी खलल पड़ता है। सोने से ठीक पहले स्क्रीन देखने से मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है, जैसे निद्रा की बीमारी होती है। और कभी कभी बार बार नोटिफिकेशन और छोटी रील्स देखने से दिमाग का ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है और याददाश्त पर भी हमारा असर पड़ता है। तनाव और अवसाद के स्रोतों बात करें तो सोशल मीडिया की लत और लगातार ऑनलाइन रहने से लोगों में अकेलेपन का भाव, एंग्जाइटी और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। तो श्रोताओं, सामाजिक और व्यवहारिक प्रभाव की थोड़ी सी बात करें तो वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा समय बिताने से वास्तविक जीवन में सामाजिक संपर्क कम होने लगता है। आज छोटे बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन टाइम से भाषा सीखने में देरी और रचनात्मकता में कमी देखी जा सकती है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की जानकारियाँ। जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: तो इसी गीत के साथ है कार्यक्रम में समय हो गया है 7:45, तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण,
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है, और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
3: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री ने युवाओं से अनुशासन व राष्ट्र सेवा के मूल्यों को अपनाने का किया आह्वान, महाराणा प्रताप को बताया त्याग व स्वाभिमान का प्रतीक। राज्य सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निशुल्क बिजली रॉयल्टी में वृद्धि का केंद्र से किया आग्रह। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को मुख्यमंत्री कल दिलाएंगे शपथ। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को हाईजैक करने का लगाया आरोप। और एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन ने लंबित देनदारियां ना मिलने पर तेज किया आंदोलन, हड़ताल की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं से अपने जीवन में अनुशासन व राष्ट्र सेवा के मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया है। महाराणा प्रताप की जयंती पर आज कांगड़ा जिले के पठियार में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप अपने साहस, स्वाभिमान व राष्ट्रभक्ति के लिए जाने जाते हैं और उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। मुख्यमंत्री ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को त्याग व स्वाभिमान का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने विपरीत परिस्थितियों, संघर्षों और कठिनाइयों के बीच भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महाराणा प्रताप इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पठियार में इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। बाद में मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में लगभग 12 करोड़ रुपए से निर्मित 2 मंजिला ई बस चार्जिंग डिपो व अनुश्रवण केंद्र का लोकार्पण किया। उन्होंने धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 70 लाख रुपए से पुनर्विकसित फवारा चौक का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर धर्मशाला में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए 3 नए इंट्रासिटी ई बस मार्गों को भी मंजूरी प्रदान की। इस बीच मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निशुल्क बिजली रॉयल्टी में वृद्धि का आग्रह किया है। उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा और आवास व शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर प्रदेश हित से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में प्रारंभिक 12 वर्षों की अवधि पूरी कर चुकी परियोजनाओं में सामान्य 12% मुफ्त बिजली रॉयल्टी के अतिरिक्त निःशुल्क बिजली रॉयल्टी की हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के कुमारहट्टी में एक आभार सभा को संबोधित किया। उन्होंने नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धरातल तक पहुँचाने में अपना सक्रिय

0: गया है और समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
1: जिला कांगड़ा में प्रधान और उप प्रधान की शपथ होनी है, तो सरकार ने 18 जून का इसमें समय तय किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी प्रधान और उप प्रधानों को नियमानुसार उसमें शपथ दिलाएंगे और सभी प्रधान और उप प्रधानों को पंचायत राज विभाग की तरफ से आई कार्ड इशू किए जा रहे हैं और उनको सबको इन्विटेशन भेजा गया है। 846 हमारे प्रधान और 846 उप प्रधान, तो दोनों मिला के हमारे 1692।
0: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज नाहन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद व पंचायत समिति अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव टाले जा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव टालने के लिए कांग्रेस सरकार उच्चतम न्यायालय में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। बिंदल ने राज्य सरकार को जनमत का सम्मान करने की सलाह देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने चुनावों में कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह नकार दिया है।
2: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का काम चल रहा है, CRF के माध्यम से जो पुलों के पैसे दिए हैं उनका काम चल रहा है, बिजली के वही काम चल रहे हैं जो केंद्र की सरकार के प्रोजेक्ट के माध्यम से काम आए, एक भी पैसा प्रदेश के बोर्ड का प्रदेश की सरकार का बिजली के काम पर नहीं लग। सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपया सरकार का खर्च कराना, केवल लोकतांत्रिक रूप से चुने हुई संस्थाओं को हाईजैक करने के, अरे जनता ने जो संदेश दिया है उसको स्वीकार करिए।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन ने लंबित देनदारियां न मिलने को लेकर अपना आंदोलन तेज कर दिया है। यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रतिदिन गेट मीटिंग की जा रही है। यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आज अपनी मांगों को लेकर शिमला के पुराने बस अड्डे में प्रदर्शन किया। यूनियन के राज्य कार्यकारिणी सह कोषाध्यक्ष लेजराम ने कहा कि उनका आंदोलन 24 जून तक जारी रहेगा और मांगें पूरी ना होने पर 25 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।
3: आज 9वां दिन हमारा गेट मीटिंग का हो गया है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमें हमारी डिमांडें उनको माना जाए, अन्यथा हम हड़ताल करके रहेंगे। 25 तारीख से हमारी हड़ताल होगी रहेगी। 6 महीने का नाइट ओवर टाइम है और मेडिकल रिवेस्टमेंट है। 50,000 की किस्त सभी कर्मचारियों को मिल गई, हमारे को अभी तक नहीं, हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो 12 बजे के बाद हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं हम हड़ताल के लिए चले जाएंगे।
0: केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाया जा रहा है। सोलन जिले में आज से नशा मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ जो 26 जून तक चलेगा। प्रदेश अनुसूचित जाति व जनजाति विकास निगम के प्रबंध निदेशक अजय कुमार यादव ने अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि नुक्कड़ नाटकों, पोस्टर मेकिंग और स्लोगन के माध्यम से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाया जा रहा है।
4: नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है और ये जो अभियान है 10 दिनों तक चलेगा, 17 जून से 26 जून, और इन 10 दिनों में अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी और हमारी पूरी कोशिश है कि समाज के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते हुए नशे के दुष्परिणाम जो समाज पे हम देख रहे हैं उसको कैसे दूर किया जाए और नशा निवारण अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक और युवा भी जुड़े हुए हैं। स्कूलों कॉलेजों में भी कार्यक्रम किए जाएंगे, नुक्कड़ नाटक भी किया जाएगा, योग दिवस के दिन योगा को भी आयोजित किया जाएगा, मैराथन का भी हमारा कार्यक्रम।
0: सिरमौर जिले के आंज भोज इलाके में शांत महायज्ञ का आज समापन हो गया। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आंज भोज क्षेत्र के धनवा गांव में शिरगुरु देवता और बिजट महाराज के नए मंदिर का निर्माण किया गया है। इसी उपलक्ष्य में इलाके में शांत महायज्ञ का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों के बीच देव परंपरा की अनूठी झलक देखने को मिली।
5: ये तो धनवा की धरती है जो कि तीर्थ स्थल बन चुका है। ये केवल मात्र एक ऐसा स्थल है जहाँ पर की विजट महाराज और शिरगुर महाराज दोनों देवता एक साथ यहाँ विराजमान है। बेसिकली ये विजट महाराज की धरती है जहाँ पर शिरगुर महाराज का बहुत प्राचीन मंदिर था, निर्माण काम चला हुआ था। आज यहाँ पर एक कुरड भी स्थापित हुआ है और ये शांत महापर्व का भी आज यहाँ समापन होने जा रहा है। चारों तरफ यहाँ पब्लिक ही पब्लिक है, श्रद्धालु ही श्रद्धालु है। पूरा जो माहौल है वो पूरा देवमय माहौल हुआ है।
6: विजट महाराज और श्रीगुरु महाराज दोनों यहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ दोनों एक ही जगह स्थापित है।
0: प्रदेश के अनेक जिलों में 19 जून तक तेज हवाओं के साथ वर्षा और ओलावृष्टि

0: संभावना है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि अगले 24 घंटों में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले के अनेक स्थानों पर ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: 18 जून से लेकर 19 जून तक जो प्रदेश के जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कई स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है और जो हाई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। मध्यवर्ती चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला है, ऊना, बिलासपुर में तो यहाँ पे 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक मौसम लाइटिंग हो सकती है। साथ में ऐसी जो डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला यहाँ पे जो पॉकेट है हमारे विशेष पॉकेट है वहाँ पे ओलावृष्टि भी हो सकती है। 18 जून को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अनुशासन व राष्ट्र सेवा के मूल्यों को अपनाने का किया आह्वान। महाराणा प्रताप को बताया त्याग व स्वाभिमान का प्रतीक। राज्य सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निशुल्क बिजली रॉयल्टी में वृद्धि का केंद्र से किया आग्रह। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को मुख्यमंत्री कल दिलाएंगे शपथ। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को हाईजैक करने का लगाया आरोप। और HRTC चालक परिचालक यूनियन ने लंबित देनदारियां न मिलने पर तेज किया आंदोलन, हड़ताल की दी चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: समाचारों के बाद श्रोताओं कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो श्रोताओं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और चलते चलते अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो धर्मशाला के साथ।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
4: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कुछ लोग गलती करने के बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ना उन्हें पछतावा होता है, ना अपने कर्मों का डर, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन याद रखो बात, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का प्रहार सबसे देर से पर सबसे गहरा होता है। समय शांत जरूर रहता है, पर हर कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है, और जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता।
2: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही कुंगली फेंक रहा है आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो, आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई।
5: तुम घर छोड़ के जा रही हो?
4: मेरी जॉब लग गई है।
5: अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है, तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना।
4: आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना है।
5: गुड गुड, जाओ पैकिंग करो।
4: हाँ, मैं पैकिंग कर लेती हूँ।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
4: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कुछ लोग गलती करने के बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ना उन्हें पछतावा होता है, ना अपने कर्मों का डर, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन याद रखो बात, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का प्रहार सबसे देर से पर सबसे गहरा होता है। समय शांत जरूर रहता है, पर हर कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है, और जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता।
2: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही उंगली फेंक रहा है आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो, आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई।
5: तुम घर छोड़ के जा रही हो?
4: मेरी जॉब लग गई है।
5: अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है, तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना।
4: आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना।
5: गुड गुड, जाओ पैकिंग करो।
4: हाँ, मैं पैकिंग कर लेती हूँ।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
4: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कुछ लोग गलती करने के बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ना उन्हें पछतावा होता है, ना अपने कर्मों का डर, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन याद रखो पार्थ, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का प्रहार सबसे देर से पर सबसे गहरा होता है। समय शांत जरूर रहता है, पर हर कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है, और जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता।
2: ए यार, फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही उंगली फेंक रहे हैं। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो, आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई।
5: तुम घर छोड़ के जा रही हो?
4: मेरी जॉब लग गई है।
5: अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है, तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना।
4: आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना।
5: गुड गुड, जाओ पैकिंग करो।
4: मैं पैकिंग कर लेती हूँ।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
1: कहाँ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना।

0: ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।